ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शकशंबत 1948 के आषाढ़ माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात होगा विविध भारती का कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर

0: देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह है विविध भारती।

वंदनवार। सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, स्वयं को तलाशने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देना है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ये समस्त संसार ईश्वर की देन है। सुख दुख हानि लाभ क्रोध मोह लोभ जैसी माया भी उसी ईश्वर की देन है। भक्ति प्रेम स्नेह जैसे भाव भी तो ईश्वर की रचना है। ये प्रत्येक जीव पर निर्भर है कि वो माया चुनता है या ज्ञान।

जब ईश्वर को सखा भाव में आत्मसात किया जाता है तो भक्ति रस कुछ अलग ही रंग लाता है। मित्र से हंसी ठठोली न हो तो भला किससे होगी।

आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण झरोखा के अंतर्गत सुबह 6:35 से श्री रामचरित मानस सुन सकेंगे। आज सुनिए 237वां भाग। संगीत सरिता में श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। दूसरी कड़ी सुनिएगा आज। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रूण मजुमदार। 7 से भूले बिसरे गीत, सुबह 7:30 से हम है राही प्यार के। 8 से समाचार प्रभात, सुबह 8:15 से त्रिवेणी के अंतर्गत कार्यक्रम त्रिवेणी सुनिएगा। 8:30 से चित्रलोक। 9:00 ये कार्यक्रम सुन सकते हैं सुबह 9:30 से। केंद्रित है पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। पिटारा में आज के मेहमान कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आज सुन सकते हैं 10 से। और इस कार्यक्रम में सुनिए वरिष्ठ साहित्यकार, कथाकार, कवि, व्यंगकार, निबंधकार, आलोचक, अनुवादक, संपादक, समीक्षक, लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी। सुबह 11 से रंग तरंग, 12 से हिंदी में समाचार, 12:05 से यादों की महफिल और दोपहर 1 का समय है कार्यक्रम सुरीला सफर का। दोपहर 2 से त्रिवेणी, 2:15 से दोपहर समाचार, 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे। दोपहर 3 से

की सहेली कार्यक्रम और 4 बजे होंगी आपकी फोन इन फरमाइशें पूरी कार्यक्रम हेलो फरमाइश के साथ। शाम 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण। शाम 5:30 से तराने नए पुराने, 6 बजे से सुनिए हिंदी में समाचार और 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 से संध्या रंजन सुन सकते हैं कार्यक्रम और 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। दूसरी कड़ी सुनिएगा, कलाकार है बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। 7 बजे से जय माला, 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आज इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में निर्देशक फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की दूसरी कड़ी सुन सकते हैं, प्रस्तुति जुबैर खान की। 7 बहानों का ये प्रहसन सुनिए रात 8 बजे से हवा महल में, लेखन सुरेंद्र कौशिक का, निर्देशन सुशील बैनर्जी का। रात 8:15 से चित्रलोक। 8:45 से सुन सकते हैं समाचार संध्या। 9 बजे से सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। रात 10 बजे से छाया गीत। दस बजकर 30 मिनट से ढलती जाए रात और 11 बजे से रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। ये थे आज के मुख्य कार्यक्रम जिनका विवरण आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस आज 237वीं कड़ी।

अयोध्या वासियों सहित राजा जनक के चित्रकूट से प्रस्थान करने की वेला आ पहुंची है। भरत के भक्ति तथा समर्पण भरे वचन सुनकर श्री राम गदगद हो गए। विदा करते हुए वो भरत को पावरी देना चाहते हैं, किंतु संकोच होता है। क्षणिक सोच विचार के पश्चात गुरुजन तथा बड़ों की उपस्थिति का संकोच त्याग कर उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने खड़ाओं की जोड़ी को सिर पर धारण किया।

0: श्रोताओं नमस्कार, संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। सभी श्रोताओं को नमस्कार। रोनू दादा, आपका एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो बताइए, आज की इस कड़ी में अपने खजाने से कौन से मोती बिखेरेंगे? मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है वो कि बांसुरी के जन्मदाता, बांसुरी की उत्पत्ति, इस संदर्भ में कुछ बताएंगे?
2: इंग्लिश में दो लाइनें कही जाती हैं, When there was nothing in the world, still there was sound. And that sound was sound of nature. जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तो भी नेचर था।
1: बिल्कुल।
2: जीव जंतु, आदि मानव या कुछ भी, उससे भी पहले पेड़ पौधे थे, नदियां थी, जंगल थे, वन थे, तो बांस

0: था। तो ये कहना कि भगवान कृष्ण जी से बांसुरी की शुरुआत हुई,
1: जी
0: ये गलत है। उससे पहले भी बांसुरी थी,
1: बिल्कुल
0: उन्होंने बांसुरी को एक साज की तरह बजाया जिससे लोग प्रेरित हुए। मगर जंगल में उन बांस के अंदर जो कीड़े मकोड़े छेद कर देते, मैंने खुद
1: देखा
0: जाके
1: है।
0: सिलचर, आसाम सिलचर में जाके मैंने खुद जंगल में मैं गया था,
1: जी,
0: और मैंने देखा कि ऐसा लग रहा है कि हवा जब चल रही तो बहुत लोग एक साथ बांसुरी बजा रहे हैं, तो वो कीड़े मकोड़े जो छेद करते हैं वहां से इंसान को बजाने की प्रेरणा
1: प्रेरणा मिली
0: मिली उन
1: बिल्कुल
0: कीड़े मकोड़ों की वजह से, और बांसुरी लोक संगीत में बजती रही।
1: जी
0: और शास्त्रीय संगीत में तो सारंगी सबसे प्राचीन वाद्य
1: जी
0: माना जाता है, और रावण हत्ता के रूप में बजता था
1: जी
0: क्योंकि रामायण काल में रावण उसको बजाते थे, और शास्त्रीय संगीत में बांसुरी का जो स्थान है वो नहीं था। लोग सोचते थे ये तो बस छोटी छोटी बंसी है, ये नुमाइश में बजेगा, और लोक वाद्य कोई भाटियाली धुन या कजरी बनारस की
1: जी जी
0: बजेगी, और या तो फिर आदिवासी लोग बजाएंगे। तो
1: जी
0: इसको शास्त्रीय संगीत में लाने का श्रेय स्वर्गीय पंडित पन्नालाल घोष जी को जाता है।
1: जी जी जी
0: संक्षिप्त में अगर मैं कहूं तो उनका उम्र बहुत कम था, मेरे जन्म से पहले वो गुजर गए 1960 में। तो उन्होंने ये बड़ी बांसुरी जो आप देख रहे हैं,
1: जी जी
0: जिसमें मैंने पिछले एपिसोड में मैंने खाली हाथ बजाई थी,
1: जी
0: इस बांसुरी का निर्माण उन्होंने किया।
1: क्या
0: और
1: बात है।
0: सा कैसे बजेगा
1: हाँ
0: इस कंसेप्ट, क्योंकि लोक संगीत में तो क्या है कि चार छेद ओपन करके भी बजा
1: हाँ
0: दीजिए, पांच छेद भी खुला रहे तो क्या नुकसान है, कोई साइंस नहीं है ना उसमें,
1: जी जी
0: उसमें सिर्फ आत्मा है। जब वो राग रागिनी में आ जाता है तो उसमें साइंस भी आ जाता है, विज्ञान आ जाता है।
1: सुर आ जाता है फिर
0: जी
1: सुरों की संख्या।
0: जी तो उन्होंने तीन होल बंद रखना तीन खोलना, ये सा दे दिया हमको,
1: अच्छा क्या
0: इतनी बड़ी
1: बात है
0: उनकी। और ये जो
1: उपलब्धि।
0: छोटी उंगली है
1: हाँ
0: उससे तीव्र मध्यम बजाने की कला भी,
1: वाह
0: इसीलिए
1: क्या
0: जो
1: बात
0: पन्ना
1: है।
0: बाबू को फॉलो करते हैं
1: हाँ
0: वो सेवन होल टेक्निक बजाते हैं,
1: जी
0: और जो हरिप्रसाद जी के गुरु भोलानाथ जी की टेक्निक से बजाते हैं वो लोग छह होल से बजाते हैं।
1: वाह क्या बात है।
0: और फिर उसके बाद पन्ना बाबू और रघुनाथ सेठ जी को ये भी श्रेय जाता है कि थंब के नीचे एक होल लगाए ताकि सा से पा तक बीड़ देखे, मैं बजा के सुना रहा
1: जी
0: हूं। ऐसे फ्रेज जो
1: वाह।
0: बांसुरी में बजते नहीं थे वो बजने लगे, और आज उसके बाद चार प्रमुख बांसुरी वादक पन्ना बाबू से प्रेरणा लेके बने। पहले बुजुर्ग पन्ना बाबू के सन इन लॉ, उनके जवाई, क्योंकि पन्ना बाबू की बेटी से उन्होंने शादी की थी,
1: जी जी
0: देवेंद्र मुर्देश्वर जी।
1: जी
0: उसके बाद मेरे गुरु जी बड़े थे वो पंडित विजय राघव राव जी,
1: जी
0: और उसके बाद रघुनाथ सेठ जी, और इन तीनों से छोटे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। हरि जी ने तो कमाल ही कर दिया।
1: जी
0: मैंने एक बार हरि जी को एक नाम दिया था, जन्माष्टमी के दिन पीटीआई ने मुझसे पूछा कि हर साल हम लोग एक बांसुरी वादक से बात करते हैं, इस साल वो आप हैं रोनू दादा। उसी साल मुझे कुमार गंधर्व अवार्ड मिला था
1: जी जी
0: 2006।
1: जी जी
0: तो बोले आप पन्ना बाबू और हरि जी को कैसे देखते हैं? मैंने कहा कि पन्ना बाबू देवकी है
1: वाह क्या
0: और हरिप्रसाद जी मां यशोदा है,
1: बात है गजब उदाहरण
0: क्योंकि
1: दिया।
0: मां देवकी ने जन्म दिया मगर बांसुरी को पाल पोस्ट के बड़ा किया हरीश जी ने, उन्होंने घर घर पहुंचा दिया, क्योंकि पन्ना बाबू का जो अधूरा काम था असामयिक वो तो 60 भी पूरा नहीं कर पाए,
1: बहुत कम उम्र में चले गए
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: 53-54 साल की उम्र में गुजर गए,
1: जी
0: तो बहुत सारा काम अधूरा था, उस अधूरे काम को इन
1: पूरा
0: चारों
1: किया।
0: के साथ मिलकर हरी जी ने फिर पूरा किया। फिर वो पीटीआई ने पूछा तो फिर आप क्या है, मैंने कहा मैं सुदामा हूं,
1: गजब क्या बात है
0: मैं तो कृष्ण की भक्ति करता हूं,
1: अद्भुत
0: मेरे पास कुछ नहीं है, वो झाल मुड़ी में जो मुड़ी डालते हैं वो मैं तौलिया में लपेट के कृष्ण को खिला दूंगा, वो
1: जी
0: खुश हो जाएंगे
1: जी
0: मेरा वादन सुन के।
1: पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने भी बांसुरी को जनता तक आम जनता तक पहुंचाई और बांसुरी एकदम से प्रचलित हो गई। दादा आपने बांसुरी में कुछ नए प्रयोग किए उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए।
0: मुझे ऐसा लगता था कि बीनकारी अंग जो है,
1: जी
0: जो कि रुद्र वीणा को बीन भी बोलते हैं,
1: जी
0: तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि बीन मतलब वो सपेरा जो बीन बजाता है वो बीन, तो बीनकार मतलब बीना,
1: जी
0: वादक के अंदर जो घसीट का जो काम होता है वो बांसुरी में आप ऐसे कह सकती हैं कि वो

0: मैंने सबसे पहले घसीट और आंदोलन,
1: जी
0: जो चीज रुद्रवीणा में बजा के सारे तो भैरव में कोमल ऋषभ अति कोमल है और धैवत भी अति कोमल है, मतलब कोमल से भी और थोड़ा सा उतरा हुआ।

0: अब मंद्र सप्तक के लिए मैंने ये शंख बांसुरी बनाई
1: जी जी,
0: जो अब पूरे संसार में पॉपुलर है
1: जी जी।
0: और बहुत सारे बांसुरी वादक मुझे फोन करते हैं कि पंडित जी ये जो नीचे के सा मंद्र सप्तक
1: जी
0: कि खरज खरज का काम के लिए ये जो आपने बनाया और इसको कॉन्सर्ट का हिस्सा ही बना दिया आपने, तो खुशी होती है कि वो कहते हैं ना कि मैं धुआं बन के जहां से चला जाऊंगा
1: जी
0: मेरे वादन में मुझे ढूंढा करेगी दुनिया।
1: क्या बात है।
0: तो मैं धुआं बन के जहां से चला जाऊंगा तो मैं एक दिन नहीं रहूंगा, मगर मेरा शंख बांसुरी बच्चे बजाएंगे, बुजुर्ग बजाएंगे, मुझे उसकी खुशी है। तो मैंने कभी किसी को रोका नहीं कि ये मेरे नाम से रजिस्टर है आप मत बजाइए, ऐसी मैंने दृष्टता कभी नहीं की
1: जी।
0: देखिए शंख बांसुरी में भैरव का, भैरव में शंकर भगवान की जटाओं का जो गहरापन है भोले बाबा का, वो देखिए।

0: अति सुंदर, अति सुंदर। तो दादा, ये जो शंख बांसुरी आपने बजाई, इसकी विशेषता भी बताएंगे हमारे श्रोताओं की, क्या विशेषता है?
1: विजय राघव राव जी के बाद भारत रत्न पंडित रविशंकर जी से भी मैंने सीखा
0: जी।
1: तो मैं उनके साथ मॉस्को गया था 1988 में
0: जी, जी।
1: भारत का फेस्टिवल ऑफ इंडिया वहां चल रहा था, और आप जैसे जानते हैं रशिया शुरू से हमारा दोस्त रहा है
0: जी।
1: और रशियन लोग बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। वहां जब सब लोग सीख रहे थे, मेरे सीनियर गुरु भाई पंडित विश्व मोहन भट्ट जी और पंडित तरुण भट्टाचार्य जी और पार्थो सारथी जो मेरी जनरेशन का ही है, शुभेंद्र राव, ये लोग मंद्र सप्तक का काम बहुत अच्छा कर रहे थे
0: जी, जी।
1: मैं नहीं कर पा रहा था
0: जी।
1: छोटी उंगली जो जिसको हम लोग लिटिल फिंगर कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके भी आप मध्यम तक इतना जा सकेंगे
0: जी, जी, जी।
1: उसके नीचे क्या
0: जी।
1: तो उस बात ने मुझे विचलित कर दिया।
0: क्या बात,
1: मन व्यथित हो गया।
0: अच्छा,
1: कि जो गुरुजी बजा रहे हैं सितार में, वो मेरे बांसुरी में क्यों नहीं आ रहा है। वहां से मैं भारत आया और काम में लग गया, और जो मेरी ओरिजिनल शंख बांसुरी है वो अभी घर में, उसको मैंने एक याद, एक संग्रह करके उसको मैंने रख दिया है। अब उसको बाहर ले जाने में डर लगता है। उस वक्त एक बैंबू जो आप देख रहे हैं शंख का, इसकी आवाज शंख जैसी है।

0: जी
1: बचता रहे, और मंद्र सप्तक
0: जी
1: में चला गया फिर मैं नीचे के सातक।
0: बिल्कुल। और जब कभी जब थियरी में लोग सीखेंगे बांसुरी की थियरी के बारे में, तो इस शंख बांसुरी को उन किताब के पन्नों पर अंकित किया जाना चाहिए। और
1: किया भी है, दीपक तो, करके लालमणि सिंह वो सरदार हैं
0: जी,
1: तो उन्होंने पूरा पीएचडी ही किया मेरे ऊपर।
0: क्या बात है।
1: उसमें पंडित शिव कुमार शर्मा, उन्होंने बहुत कुछ मेरे बारे में ऐसा लिखा जो मुझे अपने मुंह से बोलते हुए भी ये लग रहा है कि मैं अपनी तारीफ कैसे करूं। उन्होंने कहा कि रोनू के वादन में आमूलचूल परिवर्तन रविशंकर जी के पास जाने के बाद हुआ। उनका बजाने में जो कृंतन जमजमा की जो होती है ना, ना ये करेंगे तो गमक हो जाएगा। उसके पहले का जो है उसमें स्ट्रेस दिए बगैर जो जमजमा का थान है
0: जी, जी,
1: जो विलायत खान साहब जिसके बादशाह माने जाते थे।
0: क्या बात है। तो ये जो जानकारियों का खजाना है, इसको हम अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर विराम दे रहे हैं क्योंकि हमारा आज की कड़ी का समय समाप्त हो रहा है। कल ढेर सारी जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम श्रोताओं से अनुमति ले रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कल उपस्थित होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

तलत महमूद की आवाज में गीत आप सुन रहे थे। बारादरी फिल्म के इस गीत को लिखा खुमार बाराबंकवी ने और इसे संगीत से सजाया शौकत दहलवी नाशाद ने। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर सुन रहे हैं आप।

0: देवदास फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
5: एक बेटी की यादों में उसके पिता
6: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
5: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
6: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
5: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
6: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
7: रामा शेट्टी, रामा शेट्टी, रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
5: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: नूरजहां की आवाज में दुपट्टा फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मुशीर काजमी के बोल, फिरोज निजामी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर भूले बिसरे गीत।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
0: विविध भारती पर कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

0: तलत महमूद की आवाज़ में कमर जलालाबादी के बोल आप सुन रहे थे। पंडित हुसनलाल भगतराम का संगीत आदिले जहांगीर फिल्म के इस गीत में आपने सुना। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।

0: रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में उड़न खटोला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा दें, मुकेश और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म श्री 420। सुनिए ये गीत।

FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्ते रोहतास सुनने वाले सभी श्रोताओं को कुसुम कौर का प्रातःकालीन नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत सुविचार के साथ। विश्वास वो पक्षी है जो अंधेरा होने पर भी प्रकाश का अनुभव करता है। रविंद्रनाथ ठाकुर।

आज की महत्वपूर्ण घटनाओं में आज सन 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाड़ा पर जब आज के दिन आक्रमण किया तब यह दुर्ग कान्हड़ देव के भतीजे चौहान सरदार शीतल देव के अधिकार में था। आज ही के दिन सन 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। और सन 2006 में आज ही के दिन इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कप्तान डेविड बेकहम ने अपना पद छोड़ा।

और अब आइए उनके बारे में जानते हैं जो आज ही के दिन जन्मे। भारत के पैरामेंटल खिलाड़ी है सुहास एल वाई, जिनका जन्म आज ही के दिन सन 1983 में हुआ है। भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक मोहम्मद अजीज़ का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, जो 1954 में जन्मे थे। आलोक धनवा, प्रसिद्ध जन कवि का जन्म भी आज ही के दिन सन 1948 में हुआ। सन 1945 में विद्याविंदु सिंह, जो लोक साहित्य के क्षेत्र में जाना माना नाम है, का जन्म हुआ। और प्रसिद्ध उड़िया कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और निबंधकार रहे कालिंदी चरण पाणिग्रही का जन्म भी आज ही के दिन सन 1901 में हुआ था। और अब आइए उनके बारे में जानते हैं जो आज ही के दिन अलविदा कह गए। सन 1961 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे का निधन हुआ, जो अमेरिकी उपन्यासकार, लघु कहानी लेखक और पत्रकार थे। यूसुफ मेहर अली, जिनका निधन 1950 में हुआ था, जो स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक थे। असित भट्टाचार्य का निधन सन 1934 में हुआ था, जो भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। तो ये थे आज के इतिहास, जन्मे और अलविदा कह गए लोगों के बारे में एक जानकारी। तो आइए, आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं मोहम्मद अजीज़ का, तो उन्हीं के गाए इस गीत को सुनते हैं। अप

और अब आइए आज की सामाजिक स्थानीय एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर एक नज़र डालते हैं। तो आज की स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सबसे पहले शिक्षकों के स्थानांतरण को ले अंकों के आधार पर बनाई गई चार श्रेणियां। पुरस्कृत शिक्षकों की भी मनचाही पोस्टिंग मिलेगी। इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के साथ साथ राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक शामिल होंगे। नई तबादला नीति में ऐसे शिक्षकों की भी वरीयता निर्धारित की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त को 10 अंक तो राज्य पुरस्कार प्राप्त वाले को 5 अंक मिलेंगे। तबादले में 14 विभिन्न श्रेणियों की वरीयता निर्धारित की है। अंकों के आधार पर चार तरह की श्रेणी तय की गई है। इनमें 20 अंक, 15 अंक, 10 अंक और 5 अंकों की श्रेणी है। समान अंकों में भी अलग अलग वरीयता निर्धारित है। अगली गतिविधि में काम अंतिम चरण में जल्द शुरू होगा बेदा पुल। सासाराम शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू बनाने तथा जाम की समस्या से अस्थायी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी रोहतास दीपक कुमार मिश्र द्वारा प्रमुख स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान बेदा स्थित निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने बताया कि बेदा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा कास्टिंग पीरियड समाप्त होते ही इसे चालू कर दिया जाएगा।

अगली गतिविधि में रघुनाथपुर में खेल और नुमाइश प्रतियोगिता हुई। रघुनाथपुर गांव में मुहर्रम को लेकर मंगलवार की रात खेल व नुमाइश प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई खिलाड़ियों ने अपने हुनर को प्रदर्शित कर सबका दिल जीत लिया। काराकाट उद्घाटन विधायक अरुण सिंह व पैक्स अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर विधायक बाना बनेठी आदि खेलों को पारंपरिक व स्वास्थ्यवर्धक बताते हुए कहा कि लुप्त हो रहे इन खेलों को अगली पीढ़ी तक ले जाना हमारा दायित्व है। खलीफा फिरोज अंसारी के अनुसार प्रतियोगिता में लबाना, छोटकी बिसेनी व सुखहरा डिहरी की टीमों ने भाग लिया।

हमारी अगली गतिविधि में पायलट बाबा धाम में 12 को निःशुल्क न्यूरो सेवा शिविर। सासाराम जिले के प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र पायलट बाबा धाम में 12 जुलाई 2026 को निःशुल्क न्यूरो सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर का उद्देश्य तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेषज्ञ परामर्श और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराना है। मुख्य आयोजक डॉक्टर ओम प्रकाश प्रसाद ने बताया कि शिविर में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, लकवा, मिर्गी, हाथ पैर में झुनझुनी तथा गर्दन और कमर जैसी समस्याओं से ग्रसित मरीजों की जांच और परामर्श किया जाए।

और हमारी अगली गतिविधि में टाई ब्रेकर में रामगढ़ ने चैनपुर को हराया। कैमूर जिले में 65वीं जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। बुधवार को टूर्नामेंट का फाइनल मैच हुआ। बता दें जिले की विभिन्न विद्यालयों की अंडर 17 बालिका, अंडर 17 बालक एवं अंडर 15 बालक वर्ग की कुल 9 टीमों ने भाग लिया। अंडर 17 बालक का फाइनल मैच गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय चैनपुर बनाम +2 उच्च विद्यालय रामगढ़ के बीच खेला गया। दोनों टीमों के एक एक गोल से बराबरी के बाद टाई ब्रेकर में +2 उच्च विद्यालय रामगढ़ 3-2 से विजेता रहा। दूसरा मैच अंडर 15 बालक वर्ग में उर्दू मध्य विद्यालय बेलोड़ी मोहनिया बनाम ब्राइट कैरियर पब्लिक स्कूल सहुका के बीच खेला गया। इसमें ब्राइट कैरियर पब्लिक स्कूल सहुका रामगढ़ के खिलाड़ी सुमित कुमार ने एक गोल किया। और अब आइए फिर से सुनते हैं मोहम्मद अजीज को याद करते हुए आज उनके जन्म दिवस पर उनके गाए इस गीत को।

और अब आइए आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। तो श्रोताओं, लगभग सभी समाचार पत्र हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। लगभग सभी समाचार पत्रों ने आज सुर्खियां सामान्य हैं। हमारी आज की पहली सुर्खी जो है वो हिंदुस्तान से है, बड़ा फेरबदल, पुलिस प्रशासन के 1810 अधिकारी उधर इधर से उधर। वहीं प्रभात खबर लिखता है ATS व SUV के प्रभारी पंकज दराद समेत 12 IPS को नई जिम्मेदारी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, टेंडर घोटाले की जांच कर रहे SVU के ADG हटे, सुधांशु को मिली कमान। समाचार विस्तार से हिंदुस्तान से, बिहार सरकार ने बुधवार को पुलिस प्रशासन सहित विभिन्न महकमों में बड़ा फेरबदल किया। इसके तहत 1810 अफसरों का तबादला करते हुए नई जिम्मेदारी दी है। स्थानांतरित अधिकारियों में 12 IPS, 53 DSP सहित अन्य विभागों के अधिकारी और डॉक्टर इंजीनियर शामिल हैं। राज्य सरकार की विभिन्न विभागों की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 3 दर्जन अधिकारियों का तबादला किया। अधिकतर विभागों ने हर साल की युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने सबसे अधिक 300 अधिकारी और कनीय अधिकारियों को इधर से उधर किया। इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 270 अंचलाधिकारी व समकक्ष अधिकारियों को स्थानांतरित किया।

हमारी अगली सुर्खी को भी लगभग समाचार पत्रों ने अपनी जगह दी है, जिसमें हिंदुस्तान लिखता है एनएच की तरह स्टेट हाईवे पर भी देना होगा टोल टैक्स। वहीं दैनिक जागरण लिखता है राज्य की सड़कों व पुलों पर भी लगेगा टोल। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है गांवों को रिकॉर्ड पैसा, उद्योगों को गारंटी, अब राज्य की सड़कों पर भी टोल लगेगा। समाचार विस्तार से दैनिक जागरण, प्रति किलोमीटर 1.25 रुपये से 8.10 पैसे रुपये तक लगेगा टोल टैक्स, पंचायतों को 51,923 करोड़ का अनुदान। राष्ट्रीय उच्च मार्गों की तर्ज पर प्रदेश सरकार राज्य की सड़कों और बड़े पुलों के साथ बाईपास पर भी टोल टैक्स वसूलेगा। सरकार ने बिहार सरकार के स्वामित्व वाले पथ अवसंरचनाओं पर पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 को स्वीकृति कर दी है। इसके तहत राज्य की सड़कों, बड़े पुलों और बाईपास से गुजरने वाले वाहनों से श्रेणी के अनुसार टोल लिया जाएगा। हल्के मोटर वाहनों के लिए आधार दर 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर तय की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में 29 प्रस्ताव

हमारी अगली सुर्खी को भी लगभग समय समाचारपत्रों ने अपनी सुर्खी बनाई है, जिसमें हिंदुस्तान लिखता है चढ़ावा, चोरी मामले में SIT जांच की समय सीमा बढ़ाई। वहीं प्रभात खबर लिखता है चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के कमरे में मिला राम राज्य कोष का संदूक। समाचार विस्तार से, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितता मामले में पुलिस जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। SIT ने मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के अयोध्या स्थित ठिकाने योग्य केंद्र से एक संदिग्ध संदूक बरामद किया। इस बक्से पर लाल रंग से राम राज्य कोष लिखा हुआ है। इस पर पेटीएम का एक QR कोड भी चिपकाया गया था। पुलिस ने आरोपी के पास से अब तक 20,39,000 रुपये बरामद किए हैं। SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 25 जून को दर्ज हुए प्राथमिकी के आधार पर अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने बुधवार को अन्य आरोपी लवकुश मिश्रा के रुदौली स्थित घर पर भी छापा मारा। भूसे के ढेर तक ली गई तलाशी और उसके पिता को हिरासत में लिया गया। इस हाई प्रोफाइल मामले में अब तक कुल मिलाकर लगभग 80 लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी के आभूषण और 1121 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा बरामद की जा चुकी है।

हमारी अगली सुर्खी भी लगभग सभी समाचार पत्रों में छाई है, जिसमें प्रभात खबर लिखता है, कच्चे तेल के दाम कम होने से राहत, छोटू सिलेंडर 13 रुपये, कमर्शियल 183 रुपये 50 पैसा सस्ता। वहीं दैनिक जागरण लिखता है, कमर्शियल गैस सिलेंडर 172 रुपये 50 पैसे सस्ता। हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, व्यावसायिक गैस सिलेंडर बिहार में 173 रुपये सस्ता। वाणिज्यिक LPG और 5 किलो के छोटे गैस सिलेंडरों की कीमतों में बुधवार को कटौती की गई। 19 किलोग्राम वाला वाणिज्य सिलेंडर 183 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया। हालांकि पटना में 173.50 रुपये की कमी आई है। पहले पटना में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 3414 रुपये 50 पैसे थी, अब घटकर 3241 रुपये हो गई है। 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत भी 13 रुपये घटाकर 808 रुपये 50 पैसे कर दी गई है। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

हमारी अगली रिपोर्ट खेल जगत से, जिसमें हिंदुस्तान लिखता है, अभिषेक को पछाड़ नंबर वन T20 बल्लेबाज बने ईशान। भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने बुधवार को जारी ICC की पुरुषों की T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में अपने साथी खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। किशन 876 रैंकिंग अंक के शीर्ष पर पहुंचने से में इसी साल हुए T20 विश्व कप में उनके अच्छे प्रदर्शन की अहम भूमिका रही है। अभिषेक 869 12 माह तक शीर्ष पर रहे। सूची में भारत के उपकप्तान तिलक वर्मा 747 छठे स्थान पर रहे।

हमारी अगली सुर्खी प्रभात खबर से है, विश्व कप में 48 देश 10 फुटबॉलर, अकेले फ्रांस नीदरलैंड के। फुटबॉल को दुनिया का सबसे वैश्विक खेल कहा जाता है, लेकिन फीका विश्व कप 2026 ने इस पहचान को एक नया आयाम दे दिया है। इस बार मैदान पर सिर्फ देशों की टीमें नहीं उतर रही, बल्कि प्रवास, पहचान और जड़ों की कहानियां भी खेल रही हैं। विश्व कप में शामिल

कुल 1248 खिलाड़ियों में से लगभग 290 ऐसे हैं जिनका जन्म उस देश में नहीं हुआ जिसकी जर्सी पहनकर वे मैदान में उतर रहे हैं। टूर्नामेंट को लगभग हर चौथा खिलाड़ी अपने जन्मभूमि नहीं बल्कि अपने परिवार, पूर्वजों या दोहरी नागरिकता से जुड़े देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस वैश्विक तस्वीर के केंद्र में फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देश हैं। इन दो देशों के करीब 100 से अधिक फुटबॉल और दूसरे देशों में से खेल रहे हैं। यह संख्या विश्व कप में खेल रही 48 टीमों की कुल खिलाड़ियों की करीब 10% है। और इसी के साथ नमस्ते रोहतास का ये अंक यहीं संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। प्रातःकालीन आधारित कार्यक्रम नमस्ते रोहतास के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। आइए सुनते हैं समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया करें कुछ पल का इंतज़ार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईजी के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईजी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईजी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में

सफलता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन

0: लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।

0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार। जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी NCR में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल NCR, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में

0: ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सीमित रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति, देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे भूज द ब्राइड ऑफ इंडिया फिल्म का ये देशभक्ति गीत अरिजीत सिंह के स्वर में। शब्द मनोज मुतशिर के थे और धुन बनाया था अर्को ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र को। हमारा अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है पत्र आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम पसंद आपकी में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम पत्रों पर आधारित है, तो अगर आपके पत्र अभी तक हमारे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं तो फटाफट लिख भेजिए कि आप कौन से फिल्म का कौन सा गाना सुनना चाहते हैं और हम आपको सुनवाएंगे आपके पसंद का प्यारा सा गीत। तो हमारा पता आप उसके लिए नोट कर ले। हमारा पता है पसंद आपकी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम बिहार। हमारा पिन कोड है 821115। पिन कोड एक बार पुनः देख लिख ले, ध्यान दे दे, 821115। तो आपके पत्र का रहेगा हमें बेसब्री से इंतज़ार। तो श्रोताओं, अभी तक हमारे जितने श्रोताओं ने पत्र भेजे हैं, आइए उनके लेते हैं पत्र, क्योंकि उनके भी पत्र ढेर सारे आए हुए हैं। तो हमारा पहला पत्र है फुटानी चौक नरहन स्टेट से, और जो श्रोता है उनके नाम है ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित। हमारे ये श्रोता हैं भाई फटफटिया झाई, फुलेश्वरी देवी, बीके मिश्रा, विनय कुमार गनैया, विनय सुर गनैया, ये है मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से। और अगला पत्र है वाराणसी यूपी से, चिताईपुर पेट्रोल पंप के पास से, और ये हमारे श्रोताओं के नाम है लालू प्रसाद चौरसिया, अनमोल कुमार चौरसिया, अमन कुमार चौरसिया, बेबी देवी, प्रियंका देवी, भरत बाबू। और अगला पत्र है थाना नोखा ग्राम कोन वार्ड नंबर 2 रोहतास से, सोनामती देवी, अर्चना देवी, आराध्या कुमारी, प्रियंका कुमारी, राधे कुमारी, कुसुम देवी चौरसिया, कन्हैया चौरसिया, हमारे ये श्रोतागण हैं। तो आपके पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: और अब आइए कार्यक्रम का अगला पत्र लेते हैं। और ये पत्र आया है कलेर बिहार से, मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परवीन, सदफ आरजू, साहिल अरमान, शमा परवीन, सादिया तस्नीम और अलीशा का है। और वाराणसी उत्तर प्रदेश से है किशोरी श्रीवास्तव, पिंकी श्रीवास्तव, संध्या श्रीवास्तव। और ये सुनना चाहते हैं उपासना फिल्म का गीत, तो हम आइए सुनवाते हैं बिना देर किए आपको उपासना फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

और ये पत्र है गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, कुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्की वाली, फलना झा और पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार निराला है नया नगर सुपौल से, श्वेता रंजन के साथ।

और ये पत्र आया है मिर्ज़ापुर वाराणसी उत्तर प्रदेश से, और हमारे श्रोतागण हैं हरमीत सिंह डन, बंटी सिंह डंग, नवरत्न सिंह डंग, कीरत सिंह, अमोल सिंह, गुरप्रीत सिंह सेठी, अवलीन ओशी, गुन्नो, कीर्तन और मनप्रीत सिंह डंग।

0: मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और ये पत्र आया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से, और ये फिल्म में धर्मात्मा का गीत सुनना चाहते हैं मुकेश और कंचन के स्वर में। और हमारे ये जो श्रोतागण हैं उनका नाम है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, ताजपुर मोरवा से है भाई कारी राय कारी, मीना कारी, पुंज आर्यन, पुंज राज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिक्की, रिंकी, नीतू, मोहम्मद फारून, ललन मिश्रा, और जयंत कुमार बैरागी है ढोली सकरा से।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।

और ये पत्र है श्री भरत प्रसाद चौरसिया जो है पोस्ट खुरमाबाद बाजार जिला रोहतास सासाराम से, और इनके साथ समस्त चौरसिया परिवार है।

श्रोताओं, अब लेते हैं कार्यक्रम का अगला पत्र, जिसे भेजा है थाना चोर ग्राम नाद रोहतास से। श्रोतागण हैं मुन्नी देवी, सगिया देवी, छटिया देवी, लवंगी देवी, लईचिया देवी, बटरी कुमारी, और उन्होंने लिखा है, मेरे तरफ से सासाराम आकाशवाणी परिवार को नमस्कार। और ये किसी भी गाने में अपने पत्र को शामिल करने की बात कही है। तो लीजिए, आपके पत्र को हमने अपने आपके मनपसंद कार्यक्रम पसंद आपकी में शामिल किया। आप और भी गीत सुनना चाहते हैं, या अगर आप गाने के बोल बताएंगे, फिल्म का नाम बताएंगे, तो हम आपको उस फिल्म के भी गीत सुनाएंगे। ठीक है, तो अगला हमारे मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं। तो चलिए, ये हमारे जो श्रोतागण हैं वो है कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, और दुबिहा नेवादा गाजीपुर से है प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजन राय, शेरपुर कला गाजीपुर से है अवधेश राय, प्रीति राय, नवनीत राय। और हमारे ये जो श्रोता है वो है थाना मोड़ गढ़ नोखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजबुल निशा, सदाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना शहबाज, और ये फिल्म चरस का गाना सुनना चाहते हैं। तो आइए, आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर के स्वर में अभी हम सभी सुन रहे थे चरस फिल्म का ये गीत। और इसी गीत के साथ पसंद आपकी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। और अब आइए चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र और सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

0: मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण और मेट्रो सेवा का विस्तार करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। और मौसम विभाग का आज कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च पथ की तर्ज पर राजकीय मार्गों और बड़े पुलों पर आवागमन के दौरान टोल टैक्स देना होगा। इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल ने पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नई नियमावली के तहत कार, जीप जैसे हल्के वाहनों के लिए ₹1.25 प्रति किलोमीटर की दर तय की गई है। छोटे व्यावसायिक वाहनों के लिए यह दर ₹2 प्रति किलोमीटर, बड़े निर्माण वाहनों और अन्य वाहनों के लिए टोल की दर ₹6 से ₹8.10 प्रति किलोमीटर तक निर्धारित है।
1: बिहार रोड यूजर फीस डिटरमिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स 2026 को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई, यानी बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क दरों का निर्धारण एवं संग्रहण नियमावली 2026 को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी। पहले से इसमें प्रावधान नहीं था, जैसा भारत सरकार ने अभी टोल कलेक्शन के संबंध में प्रावधान किया है उसको ध्यान में रखते हुए उसके समकक्ष बिहार सरकार ने यह नीति बनाई है।
0: एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने विकसित भारत जी राम जी योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि योजना के तहत कार्यरत अकुशल मजदूरों के लिए 7 घंटे के कार्य दिवस के आधार पर मिट्टी कटाई जैसे कार्यों में लगे श्रमिकों को मजदूरी की निर्धारित दर को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की।
1: विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया तथा इसके कार्यान्वयन हेतु पूर्व से गठित संस्थागत संरचना को अधिकृत करने की स्वीकृति दी गई। न्यूनतम मजदूरी का दर 256 था, बढ़ा करके शायद 300 कर दिया गया है।
0: कैबिनेट ने पटना नगर निगम की ओर से 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद पटना नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला प्रदेश का पहला निकाय बन जाएगा। बॉन्ड से प्राप्त राशि से शहर की आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। कैबिनेट ने कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक कॉरिडोर के तहत मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण और मेट्रो सेवा का विस्तार करेंगे। इसके साथ ही पटना में मेट्रो रेल सेवा का विस्तार भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक हो जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद नितिन नवीन तथा सांसद रविशंकर प्रसाद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि मलाही पकड़ी स्टेशन के बाद मेट्रो भूमिगत हो जाएगी। इसके लिए 6 भूमिगत स्टेशनों का निर्माण जारी है। इनमें राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना साइंस कॉलेज, पीएमसीएच, गांधी मैदान और आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन शामिल है। गौरतलब है कि पहले चरण में अभी तक मेट्रो का परिचालन बैरिया स्थित पाटलिपुत्र बस स्टैंड 0 माइल से होकर भूतनाथ तक ही किया जा रहा था। प्रदेश में आज बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 8 जुलाई तक बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के ज्ञान भवन में आज विकसित भारत समृद्ध बिहार के तत्वावधान में बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। इधर इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने राज्य के सभी नागरिकों से अपने अपने कार्यक्षेत्रों में ईमानदारी, पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। प्रदेश में अब दूसरे राज्यों के चिकित्सक, नर्स और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर बिना पंजीयन के प्रैक्टिस कर सकेंगे। राज्य सरकार ने बिहार चिकित्सा संशोधन अध्यादेश 2026 और बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू कर दिया है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च पथ की तर्ज पर राजकीय मार्गों और बड़े पुलों पर आवागमन के दौरान टोल टैक्स देना होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मलाही पकड़ी।

0: इसके तहत अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या किसी अन्य राज्य की राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सक केवल निर्धारित प्रारूप में स्व प्रमाणन पोर्टल पर अपलोड कर राज्य में विधि सम्मत रूप से कार्य कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें नगर परिषद दानापुर निजामत के पार्षद पदों के आरक्षण के संबंध में आयोग की ओर से एक पत्र प्रसारित किया जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह पत्र पूरी तरह भ्रामक और फर्जी है। आयोग ने आधिकारिक सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर जाने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। प्रदेश में तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के 18 माह के DL.ED कोर्स की योग्यता पर बहाल शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 18 महीने की DEL.ED की उपाधि विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: कहाँ चलती है? इधर तो
3: इधर आइए। इधर
4: इधर
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज उत्तर और दक्षिण बिहार के कई स्थानों पर बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी

0: और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है। विभाग ने पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सीवान जिले में भी कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की संभावना है।
1: दिनांक 2 जुलाई राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण एवं सिवान जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सुपौल एवं वैशाली जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज जिले के भोरे में सबसे अधिक 92.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अपने मासिक पूर्वानुमान में कहा है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जुलाई महीने में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक बना रहेगा। झारखंड पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने रांची में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान राजद से वैशाली के पूर्व विधान पार्षद सुबोध राय समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान 303 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई है। मधुबनी जिले में ऐतिहासिक वार्षिक सौराठ सभा का आज विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर विधान पार्षद डॉक्टर मदन मोहन झा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि सौराठ सभा के दौरान मैथिल समाज के विवाह के लिए योग्य वर वधु की तलाश पूरी करते हैं, साथ ही समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अरवल जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं जूनियर तथा सब जूनियर राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। जिले के 4 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते हैं। मुंगेर जिले के पूरब सराय थाना क्षेत्र के दिलावरपुर में छापेमारी कर पुलिस ने नकली सिगरेट फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से भारी मात्रा में नकली सिगरेट सहित सिगरेट बनाने वाले सामान और 9.5 लाख रुपए नकद जब्त किया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। हालांकि पहली पाली का मैच पूरा खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। गौरतलब है कि इस मैच में वैभव सूर्यवंशी टीम 11 में शामिल नहीं थे। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल, पुलिस प्रशासन के 2014 अधिकारी इधर से उधर। दैनिक जागरण ने राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, ग्रामीण मजदूरों को 7 घंटे काम की 300 रूपये मजदूरी। दैनिक भास्कर लिखता है, भावुक पल, नए आर्मी चीफ सेठ ने लेफ्टिनेंट जनरल रहे पिता को सैल्यूट किया, फिर पैर छूकर लिया आशीर्वाद। प्रभात खबर ने राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, चढ़ावा चोरी के आरोपी के कमरे में मिला रामराज कोष का संदूक, अब तक 80 लाख रुपए हो चुके हैं बरामद। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च पथ की तर्ज पर राजकीय मार्गों और बड़े पुलों पर आवागमन के दौरान टोल टैक्स देना होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण और मेट्रो सेवा का विस्तार करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। और मौसम विभाग का आज कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के कार्यक्रम विवरणी पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मलिका। 9:30 पर हम चलेंगे पुनः आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम को। हिंदी समाचार आप सुनेंगे सुबह के 10 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 10:05 पर हम लेकर आएंगे साहित्यिक कार्यक्रम। आज भेंट वार्ता में विषय है रोहतास जिले में उद्योग की संभावनाएँ एवं विकास। वहीं आज हम एक वार्ता सुनेंगे साहित्य और संस्कृति पर।

लोक माधुरी कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे आज सुबह के 10:30 पर। भोजपुरी एल्बम लोकगीत पर आधारित ये कार्यक्रम होगा। उसके साथ ही भोजपुरी एल्बम सॉन्ग पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे रसधार सुबह के 10:45 पर, और पुनः हम लोक माधुरी आपको सुनवाएंगे सुबह के 11:00।

ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात के 7:50 से लेकर 8:45 तक। इस कार्यक्रम में आपके द्वारा ईमेल पर भेजे गए गीतों को हम आपको सुनवाते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashvani.sasaram@gmail.com। समय 1 बजे, दोपहर 1 बजे से शाम के 5 बजे तक। लोकधारा कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि के 9 बजे, भोजपुरी लोकगीत पर आधारित ये कार्यक्रम होगा। गज़लों की महफिल सजेगी रात्रि के 9:15 पर।

संध्या 5:10 पर आप भक्ति संगीत कार्यक्रम के तहत सुनेंगे वंदन कार्यक्रम को। इसके साथ ही 5:30 पर हम लेकर आएंगे युवाओं का कार्यक्रम युवाणी। संध्या 6:00 भोजपुरी लोकगीत आपको सुनवाया जाएगा।

किसान वाणी कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे संध्या के 6:10 से। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सांझे गीत हम आपको सुनवाएंगे भोजपुरी फिल्म संगीत पर आधारित संध्या के 6:40 से। इसके साथ ही 7:15 पर हम लेकर आएंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम के तहत गुड इवनिंग रोहतास।

आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती से रात्रि के 9:30 से, और हिंदी एल्बम सॉन्ग पर आधारित कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रसरंग रात्रि के 10:00। 10:30 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11:00 हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, और आज के सभा का समापन होगा रात्रि के 11:10 पर। तो ये था आज के कार्यक्रम विवरणी की एक झलक। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। आइए सुनते हैं गीत मलिका के तहत हिंदी फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे बाबा ब्लैक शिप फिल्म का ये प्यारा सा गीत मीका सिंह महालक्ष्मी के स्वर में। शब्द राजेश मंथान के थे और धुन बनाया था सुरबिया गौरव रोशन शान ने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म बाजार से, स्वर राहत फतेह अली खां, प्रतिभा सिंह बघेल के, शब्द जमील अहमद के और धुन सोहेल सेन के।

अभी आप ये गीत सुन रहे थे भावेश जोशी सुपर हीरो फिल्म का। पापोन ने इस गीत को गाया था, अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को शब्द

दिया था और अमित त्रिवेदी ने इस गीत की धुन बनाई थी। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत, चल जा बापू फिल्म से। गायक कलाकार है जावेद अली, गीतकार और संगीतकार है राहुल भट्ट।

और इसी गीत के साथ गीत मलिका का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर, और हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से होगा विविध भारती के तहत। तो कृपा करें कुछ पल का इंतज़ार।

0: देखो भाई, बहुत मुश्किल से तुम्हारी जॉब लगी, पर पहले माँ की सैलरी पर तुमने सबको मिठाई तो खिलाई और सबसे अहम काम करना भूल गए। लाडले चौंक कर, क्या काम? अल्लाह की राह में कुछ भी खर्च न कर पाए। लाडले शर्मिंदगी के साथ
1: हस्तियों का अनमोल खजाना।
2: आनिलो शाम सवरे,
1: जरा सुनिए कैसी बना ये गाना।
3: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
1: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
3: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज।

0: वन माय नेम इज लखन माय नेम इज लखन सजनों का सजन मेरा नाम है लखन।
1: दोस्तों लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।
0: उंगली में

0: नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
1: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा।

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहां याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा,

0: तारे क्यों भाई, बादल क्यों भाई मोती, मैं तो कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

और ये गीत है साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आप भी याद रखेंगे क्योंकि फिल्म का नाम है याद रखेगी दुनिया।

0: इसलिए।
1: दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौडवाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

0: तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी

जुबिन नौटियाल की आवाज में आपने सुना ये गाना। गुरुप्रीत सैनी के बोल थे, रोचक कोहली का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलराज कौर की आवाज, मोहसिन नकवी का कलाम।

बहारों का मौसम रंग बिरंगे फूल और सुगंध मन मस्तिष्क में घुल जाता है। धीरे धीरे ये बंधन दूर चला जाता है और उन लम्हों को याद करते रह जाते हैं। तो याद की बात हुई है, अब इस गीत को जरा सुनते हैं। आप हमें ये बताइए कि इस फिल्म में जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम क्या थे?

जब आप मिला, वासु की भूमिका कमल हासन ने निभाई थी और सपना बनी थी रति अग्निहोत्री फिल्म एक दूजे के लिए का ये गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कितनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं आनंद बख्शी साहब ने, दुनिया में प्यार की एक ही बोली। तो बताइए कि इस एक ही बोली के साथ साथ कितने सारे गीत बनते चले जाते हैं, और वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा मन को लुभाता है? बताइए हमें कि इस भाव के साथ लिखा गया वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा लुभाता है। हमारे श्रोताओं के कुछ संदेश हैं। मन किसी गीत नगमे की तरह खिल रहा है और किसी खास इंसान, अनजाना रिश्ते की तरफ, अपने भीतर छिपे किसी एहसास की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये मौसम की इनायत भी हो सकती है और प्यार का एहसास भी। हमारे एक श्रोता ने बताया कि सुरीला सफर शुरू होते ही बनारस में बारिश शुरू हो गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई बारिश की, ये मौसम की पहली बारिश, बहुत बहुत मुबारक। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज तो सुरीला सफर में शायद विवाह की बात होगी। एक ऐसा रिश्ता अनजान होते हुए भी एक दूसरे को सब कुछ सौंप देना, प्यार की असीम खुशी के साथ जीवन जीने की इच्छा और 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करना ही जीवन है। एक और श्रोता ने कहा है कि कहा जाता है कि बंधनों के कई रूप होते हैं, 7 फेरों का बंधन, 7 जन्मों का बंधन, जन्म जन्मांतर का बंधन, परंतु एक बंधन और हो भी होता है, मन से मन का। बहुत सुंदर। रेशम सा कोमल, बहते हुए नीर सा पवित्र, हवाओं में खुली हुई चंदन और फूलों की महक सा, जो मन से मन की डोर को बांध कर रखता है। जब यह बंधन बनता है तो एक चुप सा मौन सा बन जाता है। यहाँ दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है, जिसमें किसी अग्नि साक्षी, किसी हवन, यहाँ तक कि किसी सात वचन की भी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ जो प्रेम डोर में बंधन होता है, उसे आपस में केवल मन से मन को एक मौन ने स्वीकार किया है। न बांधने की चाहत, न छूटने का डर, क्योंकि ये है मन से मन का बंधन। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अब अगला गीत सुन रहे हैं, सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। और हाँ, मौसम को लेकर जो प्यार की बोली की बात है, उसमें आपको सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, मन के करीब गाना कौन सा लगता है?

0: इकबाल कुरैशी का संगीत था इस फिल्म में लव इन शिमला का। ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। और हमने जो गानों के का जिक्र किया था कि ऐसे दिल के बोल, दिल की प्यार की बोली बोलने वाले कौन से गाने आपको पसंद हैं, तो हमारे श्रोताओं ने कई गाने, बड़े सुंदर सुंदर गाने लिख भेजे हैं। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, और पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, रफ़ी जी, सुमन जी, शगुन फिल्म का गाना, और एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आना तो आके कभी अब जाना नहीं। एक श्रोता लिख रही है कि बाहर बरसात हो रही है और रेडियो सेट पर गानों की क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया। एक श्रोता पूछ रहे हैं कि रुम्बा कहाँ की भाषा है, इसका क्या मतलब है जी। तो अच्छा होगा कि हमारे जो कोई दक्षिण भारतीय साथी इस समय हो फेसबुक पर वो बताएं। एक बड़ा खूबसूरत सा गाना हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है, अरे ओ शोख कलियों मुस्कुरा देना, जो वो जब आए, सुनो फूलों महक अपनी लुटा देना, वो जब आए, फिल्म जब याद किसी की आती है का ये बड़ा ही सुंदर सा गीत इन्होंने हमारे साथ साझा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता बता रहे हैं कि फिल्म एक दूजे के लिए मैंने 1982 में पहला मैटनी शो देखा था, उस समय मैं फोर्थ ईयर कॉलेज में था। इस फिल्म ने सभी को पागल बना दिया था। और बहुत सारे संदेश और भी हैं। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम अंगड़ाई में गदराई वसुधा के रूप सौंदर्य से बौराए आशिक मिजाजी दीवानगी को और भी दहनशील बनाती इबारत है, सुमन सुगंध व्याप्त कुसुम दल के मधुरस पान कराती और प्रेम रस बिखेरती इबारत में दीवानगी की हदें पार हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य, फूलों की मुस्कान एवं भीनी खुशबू और मौसम का मनमोहक मिजाज आपस में मिलकर एक ऐसी जीवंत कविता रचते हैं जो तन और मन को गहराई से भिगो देती है। ये वो त्रिवेणी है जहां हर एक तत्व दूसरे का पूरक बनकर इस धरा को स्वर्ग जैसा अनुभव कराता है। सौंदर्य, सुगंध और मौसम के संगम का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या बात कही है, बदलते मौसम के साथ प्रकृति का मिजाज भी बदलता है। आसमान में तैरते बादलों की लुका छिपी, कभी रिमझिम फुहारें और क्षितिज पर बिखरती सूर्य की किरणें ऐसा समा बांधती हैं कि प्रकृति का हर कण जीवंत हो उठता है, जो आसमान के साथ जीवन में भी सतरंगी इंद्रधनुष रच देता है। तो बताइए कि ये जो इंद्रधनुष रचता है सतरंगी आसमान में बारिश के दिनों में, उस इंद्रधनुष के साथ रंगों का प्रयोग इस गाने में तो हो ही रहा है जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और कहां कहां पर होता है, और क्या आज भी आप वैसे ही ललक कर इंद्रधनुष देखने छत पर जाते हैं या बाहर निकलते हैं जैसे बचपन में जाया करते थे?
1: मैंने

सलिल चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ ये सुरीला सा गाना आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज में आपने सुना, और बहुत सारे श्रोताओं ने बताया वो गाना जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, ये भी मुझे पसंद है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस मौसम का सबसे बेहतरीन सुंदर गीत जो मेरा और विविध भारती का पेटेंट परमानेंट गीत है, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। इस गीत का फिल्म का नाम मैंने विविध भारती रखा है, वैसे इस फिल्म का नाम है मंजिल। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रफी साहब की आवाज है ये तो पहचाने, इन्होंने शायद लव इन शिमला फिल्म के उस गाने की बात की है। कहा बात इसी गाने के लिए, हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि इस गाने में इलेक्ट्रिकल हवाईयन गिटार स्वर्गीय सरदार हजारा सिंह जी द्वारा बजाया गया है, और बड़ा प्यारा गीत दिल थाम चले हम। जब भी बारिश होती है तो पहले ये गाना होठों पर तैर जाता है, बरखा रानी जरा जम के बरसो, और ये पर्वतों के दायरे ये शाम का समा, ये गाना बहुत पसंद है हमारे एक और श्रोता को। मौसम आधारित गीतों में सबसे ज्यादा पसंद है ये गाना हमारे एक और श्रोता को, मौसम मौसम ये लवली मौसम, और दूसरा लोफर का आज मौसम बड़ा बेईमान है। और हमारे कुछ श्रोताओं ने दिल थाम चले गीत के बारे में बताया है कि बहुत ही रोमांटिक गाना है। एक श्रोता बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा लुभाने वाला फिल्म गीत है तीसरी कसम का, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि इस गीत के बारे में केवल ये पता है कि रफी साहब गा रहे हैं। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं को पता है कि इस फिल्म में रफी साहब की गीत के इस आवाज को पर्दे पर कौन अपने होठ हिला रहे हैं, तो अगर आपको पता हो तो हमें जरूर लिख भेजें। एक और श्रोता ने केदारनाथ फिल्म के गाने का जिक्र किया है, काफिराना सा है इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, बहुत सुंदर गाना।

मैं तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये इनका गाना बहुत इन्हें प्रिय है। तमिल भाषा का शब्द है रुम्बा, हमारे एक श्रोता ने बताया है। और एक और श्रोता कह रही हैं कि आपकी दुआ का असर हुआ है, कल बनारस में रात को 1 घंटा रिमझिम बारिश हुई थी, हमारे सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से भीग गया था, जैसे खिल गया सब पेड़ पौधे। बनारस में मौसम सहनीय हो गया है, आपको ढेर सारा शुभेच्छा। आप नहीं वर्षा के बाशिंदों को दुआ भेजिए जी, जरूर वहां बारिश होगा। क्या बात है भाई, हम तो बिल्कुल भेज रहे हैं अपने उन सभी श्रोताओं के लिए, ठंडे ठंडे बादल वहां तक पहुंचे। और अब ये गाना आप सबके लिए, जरा इस गीत को सुनिए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए।

इंद्रधनुष को लेकर हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब कई देखने को मिले। इंद्रधनुष को देखना अच्छा लगता है बचपन में भी और अब भी, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और एक और श्रोता ने बताया कि मैं अमेरिका के नियाग्रा फॉल देखने गई थी, वहां मैंने एक ही जगह पर ही छोटे छोटे बहुत से इंद्रधनुष

हर थोड़ी थोड़ी दूर पर देखे जो बहुत अजूबे से लगे। वाकई हम तो सोच रहे हैं कि क्या नजारा होगा वो। एक और श्रोता ने कहा है कि असल जिंदगी में मुंबई में इंद्रधनुष नहीं दिखता। आज का प्रोग्राम मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि मुंबई से बाहर जाके इंद्रधनुष देखूं। क्या बात है। एक और श्रोता ने कहा है कि इंद्रधनुष जब भी बादलों से झांकता था हम रंग गिनने लग जाते थे, शहरों में कम दिखाई देता है, मिस यू। सच में इंद्रधनुष जब भी दिखता है तो लगता है वाह वो दिन लौट आए। एक और श्रोता ने कहा है कि हम तो अभी भी इंद्रधनुष उतनी ही ललक के साथ देखते हैं, और एक बार तो दो एक साथ इंद्रधनुष निकले थे तो इच्छा भी मांग ली। हाँ ये टोटका तो बहुत ही ज्यादा कारगर होता था, और कितना इसको जो सबसे पक्की सहेलियां होती थी वो तुरंत दौड़कर बुला ले जाती थी कि चलो चलो दो इंद्रधनुष निकले हैं, जो मांगना है मांग लो। और बहुत बार मांगा जाता था कि भाई गणित का पर्चा बड़ा खराब होने वाला है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वो उसमें अच्छे नंबर आ जाए, या कि हमें ये ड्रेस मिल जाए, कुछ इस तरह की ख्वाहिशें होती थी। आपने क्या कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की है हमें जरूर बताइएगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रुम्बा ये तमिल शब्द है, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत या बहुत ज्यादा। एक और श्रोता ने कहा है रंग तो जीवन शैली का अभिन्न अंग है, शिक्षा हो, सजावट हो, प्रकृति हो, विज्ञान हो या जीवन ही क्यों ना हो, ये सात रंग ही असली हैं, बाकी सब नकली है। बरसातों में दूर पहाड़ पर ये इंद्रधनुष मनमोहक होता है। और ये भी तो बताइए कि इन सात रंगों का, इन सात की ये गिनती जो है वो सुरों में भी इस्तेमाल होती है, सात सतरंगी सपने भी होते हैं और इंद्रधनुष तो होता ही होता है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी सगाई के बाद जब पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मुलाकात हुई थी तो मौका देखकर अकेले में ये गीत गाकर सुनाया था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये सुनकर वो मुस्कुराई, ये प्यार आज तक कायम है और अंतिम सांस तक रहेगा। वाह बहुत सुंदर बात। एक और श्रोता कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने, सुरीले सपने चुने, हर अंतरे में कई भावों को बांध कर दिल की बातें करता हुआ प्रतीत होता है, मुकेश जी की आवाज। और ये हमारे श्रोताओं ने कुछ संदेश में कहा है रजनीगंधा की बात। रजनीगंधा संग खिलता मन अक्सर किसी अनजाने से बंधन की महक से सराबोर हो जाता है। जिंदगी की आपाधापी में जब कोई खास करीब आता है तो भावनाएं धीरे धीरे से दिल में अपनी जगह बनाने लगती हैं। शुरुआत भले ही खामोश हो लेकिन जैसे ही दिलों के तार जुड़ते हैं जीवन के सारे सुर सुरमई हो जाते हैं और बिखरे हुए जज्बात सिमट कर एक मुकम्मल ताल में बन जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। तो चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनकर बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में अभिनेत्री कौन थी। और साथ ही आपको ये भी बताना है कि ये जो फूल है रजनीगंधा ये गुलदानों में बहुत लोकप्रिय होता है, या कभी हम जब किसी को बुके गिफ्ट करते हैं, आपको अपने फ्लावर वेज में कौन सा फूल सबसे सुंदर लगेगा अगर आप किसी को देना चाहें या घर में सजाना चाहें, कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है?

पिछले गीत के सवाल का जवाब नजर आया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि प्रेम गीत फिल्म के का जो गाना हमने सुनवाया था और पूछा था कि प्रमुख कलाकार कौन से हैं, राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया है ये गाना और इनकी लिस्ट का ये पांचवा गीत शामिल हुआ, बहुत बहुत बधाई। और एक और श्रोता ने बताया कि जबलपुर का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, बरखरानी आज सुबह से ही बरस रही है, सुबह सुबह छत पर जाकर सूर्य नमस्कार करने की आदत है, आज जब छत पर गए तो रिमझिम फुहारों और फुहारों के साथ फूलों का झूमना, पंछी की मधुर आवाज दिल को अजीब सुकून दे रही थी, ये मंजर हमने वीडियो में कैद कर लिया है। आज की बारिश शायद ये कहना चाह रही है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, ये पल हमें याद आएंगे, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। अच्छा, इन्होंने कुछ और गीत भी बताए हैं, क्या मौसम है चल कहीं दूर निकल जाएं, हाँ ये भी बहुत सुंदर ही सा गीत है। एक श्रोता ने बताया कि बचपन में जब इंद्रधनुष दिख जाता था तो हम कुछ विश मांगते थे, और एक श्रोता ने कहा है कि वाह क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने, हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का आगमन होता है तो मोबाइल लेकर छत पर चढ़ जाते हैं रूई जैसे सुंदर सुंदर मेघों की क्लिक्स लेने के लिए, खूब सारी क्लिक्स लेते हैं लेकिन फिर वापस भागना पड़ता है भीगने के डर से, स्वयं नहीं मोबाइल के। सच में मोबाइल बचाना बहुत जरूरी है इस मौसम में। एक और श्रोता कह रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे इंद्रधनुषों वाला एक संदेश पढ़ा था उसी से संबंधित है ये संदेश हमारी एक और श्रोता का, लिखा है ये तो हमने भी देखा क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच का नजारा ही है नियाग्रा फॉल्स पर, बड़ा ही प्यारा नजारा, हम कभी नहीं भूल सकते, वो इतना प्यारा समा, वो पल मानो हमारे दिल में सदा के लिए बस गया है। एक और श्रोता ने कहा है कि मौसम की बातें हो रही हैं तो आज सभी को गरजते बरसते बादलों का इंतजार है, लेकिन कुदरत भी और इंतजार करा रही है, इंतजार के इस वक्त के लिए इनको गीत याद आया है, कहाँ से आए बदरा, फिल्म चश्मे बदूर का गाना। और एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई इंद्रधनुष प्रेमी इंद्रधनुष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भली भांति देख सकते हैं और अपने अपने दुनिया को मुट्ठी में भरकर खुश हो सकते हैं। भाई ये कुछ मतलब ठीक है देख सकते हैं, लेकिन देखने के साथ जो उसको एक उल्लास जुड़ा रहता है वो कैसे महसूस होगा। ये हमारे एक श्रोता ने मैसेज भेजा है कि आज कालिख वक्त एहसास और यादों के खूबसूरत ताने बाने को बुनता है, ये महज एक कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि जिंदगी के सुरीले सफर का एक जीवंत दस्तावेज है, इसमें एक ऐसे रूमानी मौसम का जिक्र है जो अपने साथ सतरंगी ख्वाब लेकर आया है, जहां अनजाने रिश्ते भी सदियों पुराने लगते हैं, जैसे जैसे ही रजनीगंधा की भीनी खुशबू हवाओं में घुलती है जिंदगी का हर बिखरा सुर एक मुकम्मल ताल बन जाता है, ये लम्हा भले ही हमेशा न ठहरे पर जाते जाते दिल में ताउम्र मुस्कुराने वाली एक मीठी कसक छोड़ जाता है। सच में एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार का सुहाना मौसम, सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियां प्रदान कर रही है, सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही है, मन भावन गीत तन्मयता से गुनगुना रही है, बिल्कुल बादल बिजली चंदन पानी और सुमन सुगंध की तरह, धीरे धीरे यह मस्ताना मौसम एक मीठी मीठी सी चुभन और ठंडी ठंडी सी अगन हमें अर्पित कर रहा है, सुरीले सफर में आज ऐसे ही कुछ मधुर गीत। और इन्होंने कुछ गीतों का भी जिक्र किया है, और बड़ी खुशी की बात है कि ये शुरुआत में भेजा हुआ संदेश, इसमें से कई गाने हमारी लिस्ट से मैच हो गए। एक और

0: दोस्तों ने कहा है कि कलियां और बहारों की तो बातें हैं, और रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, आओ मिल जाए हम सुमन और सुगंध की तरह। ये कुछ इन्होंने गीत लिखे हैं, तो चलिए ये गीत भी शामिल हो गए। और एक और श्रोता ने कहा है कि फूल और कलियों की बातों पर इन्होंने अपने चारों तरफ उन्हें खिलते हुए महसूस किया है। अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए, इस गीत को सुनिए, बताइए फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।
1: अभी अलविदा मत कर।

रात होगी लेकिन यादों के ये चिराग जलते रहेंगे। हमारे श्रोताओं ने बताया निकाह फिल्म का ये गाना आपने सुना। महेंद्र कपूर की आवाज़, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, राज बब्बर और सलमा आगा की ये फिल्म। और बहुत सारे संदेश भेजे हैं उन फूलों के बारे में। हमारे एक श्रोता ने कहा है, रजनीगंधा तो सच में दिल से दिल की आवाज़ पहुंचाने का जरिया है। मानो हमारी गुरु स्वरूपा दीदी ने जब इतने प्यार से हमारे सत्संगी सखी के लिए रजनीगंधा फूलों का गुलदस्ता भेजा, तो नेत्रहीन हो चुकी और डायलिसिस पर चल रही सखी फूलों को पाकर खुशी से झूम उठी और रजनीगंधा फूल तुम्हारे गीत गुनगुनाने लगी। उनकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी से सारे दर्द भूल कर उनके साथ झूमने लगे। ये बदलाव पर व्यंग है जिसकी गिरफ्त में हम सभी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। ग्लोबल

बॉम्बिंग का दर्द झेल रहे हैं, ये हमारे एक और श्रोता ने कहा है, जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। और हमारे और श्रोताओं के भी संदेश हैं, लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है। एक श्रोता कह रही है कि फ्लावर वास से ज्यादा हमको ये जो पेड़ों पर फूल अच्छे लगते हैं, पेड़ों पौधों पर अच्छे लगते हैं, क्योंकि फ्लावर वाज में ये जल्दी से मुरझा जाते हैं। हाँ, सच में मुरझा जाते हैं, लेकिन यादों की खुशबू कभी कम नहीं होती और कभी नहीं मुरझाते वो फूल जो मीठी मीठी बातों के साथ हमारे मन में यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: Act AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Shri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base.
1: Malahi Pakri Metro Station ka lokarpan aur metro seva ke vistar ka shubharambh kiya. Iske saath hi Patna mein metro rail seva ka vistar ISPT se Malahi Pakri tak ho gaya hai. Is avsar par Up Mukhyamantri Vijay Kumar Chaudhary, Vijendra Prasad Yadav, Nagar Vikas Mantri Nitish Misra, Bhajpa ke Rashtriya Adhyaksh aur Sansad Nitin Naveen tatha Sansad Ravishankar Prasad sahit kai ganmanya log upasthit the. प्रदेश में आज बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया। श्री चौधरी ने कहा कि विकसित भारत समृद्ध बिहार थीम पर आयोजित जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को और मजबूती देना है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार समाज और व्यवस्था को कमजोर करता है तथा विकास की गति को बाधित करता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। इधर इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने अपने संदेश में सभी राज्यवासियों से अपने अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी, पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। प्रदेश में आगामी 14 अगस्त तक 1 करोड़ लोगों की टीबी स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मिशन मोड में अभियान चलाकर लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य की 2,76,00,000 लक्षित आबादी में अब तक 39,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। यह लक्ष्य का केवल 14% है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर के अधवारा में सबसे अधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज अरवल और रोहतास जिले में भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना से वेतन आयोग के अवर सचिव आमोद मिश्रा को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

0: किया है। गिरफ्तार अधिकारी एक सेवानिवृत्त कर्मी से एरियर के भुगतान के एवज में रिश्वत ले रहा था। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार मृतकों में बिहार के रहने वाले श्रमिक भी शामिल हैं। सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत नरसिंह भानपुर गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 किशोरियों की मौत हो गई। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में एक किराने की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। इंतखाबी कमीशन ने पटना की बांकीपुर असेंबली सीट के ज़िमनी इंतखाब के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। इस सीट के लिए 30 जुलाई को पोलिंग होगी। नोटिफिकेशन 6 जुलाई को जारी होगा और उसी दिन से पर्चा नामजदगी का काम भी शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार 13 जुलाई तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 14 जुलाई को पर्चों की जांच होगी और नाम वापसी की आखिरी तारीख 16 जुलाई मुकर्रर है। वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। बीजेपी सदर नितिन नवीन के इस्तीफे के सबब इस सीट पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के प्राइमरी कॉरिडोर के तहत मलाही पगड़ी मेट्रो स्टेशन की तौसी का इफ्तिताह किया और मेट्रो सर्विस की तौसी की। इसके साथ ही पटना में मेट्रो रेल खिदमात की तौसी ISBT से मलाही पगड़ी तक हो गई है। इस मौके पर डिप्टी CM विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, शहरी तरक्यात के वजीर नितेश मिश्रा, बीजेपी के कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट नितिन नवीन और रविशंकर प्रसाद समेत कई मुअज्जज लोग मौजूद थे। रियासत में आज बिहार चौकसी बेदारी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर पटना के ज्ञान भवन में मुनक़िद प्रोग्राम में वजीर आला सम्राट चौधरी ने बिहार बेदारी हफ्ते का आगाज़ किया। श्री चौधरी ने कहा कि विकसित भारत खुशहाल बिहार थीम पर मुनक़िद बेदारी हफ्ते का मकसद बदउनवानी के मामले में सिफर टॉलरेंस की पॉलिसी को और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि बदउनवानी समाज और सिस्टम को कमज़ोर करती है और तरक्की की रफ्तार को मुतासिर करती है। वज़ीर आला ने लोगों से बदउनवानी से पाक बिहार की तरक्की में सरगर्म हिस्सेदारी निभाने की अपील

0: की पॉलिसी को और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि बदनवानी समाज और सिस्टम को कमज़ोर करती है और तरक्की की रफ्तार को मुतासिर करती है। वज़ीर आला ने लोगों से बदनवानी से पाक बिहार की तरक्की में सरगर्म हिस्सेदारी निभाने की अपील की है। इधर इस मौके पर गवर्नर सैयद अता हसनैन ने अपने पैगाम में सभी बाशिंदों से अपने अपने दायरे कार में ईमानदारी और शफाफियत को अव्वलिन तरजीह देने की अपील की। रियासत में 14 अगस्त 2026 तक 1 करोड़ लोगों की टीबी स्क्रीनिंग का निशाना रखा गया है। चीफ सेक्रेटरी प्रति अमृत ने मिशन मोड में मुहिम चलाकर हदफ को हर हाल में पूरा करने की हिदायत की है। टीबी से पाक भारत मुहिम की जायजा मीटिंग में बताया गया है कि रियासत की 2,76,00,000 के निशाने वाली आबादी में अब तक 39,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। मानसून की सरगर्मी से रियासत में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कैमूर के अधवारा में सबसे ज़्यादा 86.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम के कयास आरआई में कहा गया है कि आज अरवल और रोहतास ज़िले में शदीद बारिश का इम्कान है। वहीं रियासत के जनूब मगरबी हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बिजली गिरने का इंतबाह जारी किया गया है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना से तनख्वाह कमीशन के अंडर सेक्रेटरी आमोद मिश्रा को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अफसर एक सुबकदोष मुलाजिम से एरियर की अदायगी के एवज में रिश्वत ले रहा था। बेंगलुरु जनूबी तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। मकामी इंतजामिया के मुताबिक मरने वालों में बिहार के रहने वाले मजदूर शामिल हैं। सारण जिले के अमनौर थाना इलाका के तहत नरसिंह भानपुर गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना इलाका से पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से कसीर मकदार में शराब के साथ 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है। मगरबी चंपारण जिले के रामनगर थाना इलाका में एक किराने की दुकान में शॉर्ट सर्किट से ज़बरदस्त आग लग गई। आगजनी के वाक़े में लाखों की मालियत जलकर तबाह हो गई। हादसे में एक नौजवान भी शदीद तौर से झुलस गया। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के कुल 3,522 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी है तो विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bfsissc.com से प्राप्त किया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 1500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.sbi.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अप्रेंटिस के कुल 550 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट

0: स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
0: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट लगाने में सहायता मिलेगी।
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाईची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जयराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,00,000।

0: 51,282 करोड़ रुपया।
1: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
3: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर

0: घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म रोटी में सुनिए किशोर कुमार को, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: तक रहिए।
1: स्वागत है दोस्तों आप सभी का, और ये जो समय है ये समय है एक ऐसे कार्यक्रम का जिसका नाम है एक ही कलाकार। तो आज के जो कलाकार हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, बस एक गाने की झलक आपके सामने रख रही हूं। आप मुझे बताइएगा कौन से हमारे आज के कलाकार हैं।

0: My name is Lakhan. My name is Lakhan. Sajno ka sajan. Mera naam hai Lakhan.
1: जी तो आपने अनुमान लगाया हमारे आज के कलाकार कौन है? पहला जो जवाब हमारे जहन में आता है वो किसका आता है? अनिल कपूर. नहीं जी, जैकी श्रॉफ बिल्कुल भी नहीं. तो फिर कौन होगा? देखिए ना, अब मैं आपको बताती हूँ कौन है हमारे आज के कलाकार. और बताऊँ आपको, पहली जो हमारे पास में ईमेल आई है वो भी इसी जवाब के साथ आई है. जी हाँ, वो है हमारे साथ में प्रकाश वर्मा जी, लिख रहे हैं कि आज के कलाकार है अनिल कपूर. नहीं प्रकाश जी, मैं आपको बता रही हूँ आज के हमारे कलाकार कौन है. तो देखिए, हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही बरसों पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं. वे आवाजें केवल गीत नहीं गाती बल्कि एक पूरे दौर की धड़कन बन जाती हैं. ऐसी ही एक दमदार, बुलंद और दिल छूने वाली आवाज किसकी थी? देखिए, वो आवाज थी मोहम्मद अजीज की. तो आज उनकी जयंती के अवसर पर हम याद करेंगे उस फनकार को जिसने अपने शुरू से 80 और 90 के दशक के संगीत को नई ऊंचाइयां दी. तो अब आप समझ गए हमारे आज के कलाकार कौन है. जी हाँ, आज के कलाकार हैं मोहम्मद अजीज. और आज का ये जो सफर आप तय करेंगे वो आप तय करेंगे मेरे साथ, यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली के साथ.

0: ये गाना सुनते ही बस हमारे सामने उस शख्स की छवि उभर जाती है जिसका नाम था मोहम्मद अजीज। इनका जन्म 2 जुलाई 1954 को पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में हुआ। उनका पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। बचपन से ही संगीत उनके जीवन का हिस्सा था। महान गायक मोहम्मद रफी उनके आदर्श थे और शायद यही कारण था कि उनकी गायकी में रफी साहब की मिठास और अपनी अलग बुलंद आवाज का अनोखा संगम सुनाई देता है। दोस्तों, यहां पर ना मैं आपको उनके एक उस गीत को याद दिलाना चाहती हूं जो उन्होंने अपने आदर्श, अपने आइडल, जी हां, मोहम्मद रफी की याद में गाया था। और वो जो गाना था वो बकायदा मोहम्मद रफी साहब की याद में ही था। तो वो गाने की झलक मैं आपको यहां पर सुना रही हूं। फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके भी मन में उनके कौन कौन से गानों के लेकर के क्या क्या यादें हैं। तो हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं फिल्म क्रोध का ये गाना।
1: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा

जी हाँ, तो इस गाने को आपने सुना और ये उन्होंने अपने आदर्श मोहम्मद रफी के लिए गाया था। और हमारे आज के कलाकार मोहम्मद अजीज के बारे में आपको बता दूं कि उन्होंने ना कोलकाता में कई वर्षों तक मंच पर गाना गाया। बंगाली फिल्मों में भी उन्हें अवसर मिले, लेकिन हर कलाकार की तरह उनका सपना भी मुंबई तक पहुंचने का था। संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन प्रतिभा अपना रास्ता खुद बना लेती है। मुंबई आने के बाद ना मोहम्मद अजीज की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। संगीतकारों ने उनकी आवाज की ताकत को पहचाना, लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई वह थी 1985 की सुपरहिट फिल्म मर्द। और गाना कौन सा था बताइए? जी हाँ, यही वाला।

देखिए ये जो मर्द टांगे वाला है ये हमारे आज के कलाकार हैं मोहम्मद अजीज और आप लोगों ने कितनी खूबसूरत बातें इनके लिए लिखी है तो वो आपके साथ जरूर साझा करूंगी। देखिए ये लिखते हैं प्रेम सागर शुभलता रोहित सैनिक कॉलोनी फरीदाबाद से वी विश हैप्पी बर्थडे टू मोहम्मद अजीज वी आर एंजॉइंग द प्रोग्राम थैंक यू सो मच। और ये लिख रहे हैं नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंत कौर मनु फिल्म अच्छा नहीं देखिए सर ये कार्यक्रम हम आपको फिर बता दें फरमाइशी नहीं है इसमें हम कलाकारों की बात करेंगे और आज के हमारे कलाकार हैं मोहम्मद अजीज। फिर हमारे साथ हैं और भी हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं आज के कलाकार हैं मोहम्मद अजीज और इनकी जानकारी और गीत अच्छे लग रहे हैं। ये कौन लिख रहा है वीरमगाम जंक्शन से अजित कुमार भावसर प्रमीला बेन भावसर। फिर है हमारे साथ ये है ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल जय हिंद पाल दीक्षा पाल प्रतीक्षा पाल विमलेश पाल दिव्यांश बघेल और परिवार। और हमारे साथ हमारे दूसरे दोस्त जुड़े हैं ये हैं चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह राम सहोदर नारायण प्रसाद लहरे दिनेश प्रसाद लहरे कालिंदरी लहरे। और ये है हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से और इन्हें बिल्कुल समझ में आ गया है कि सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद अजीज जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है। और ये लिख रहे हैं तुलसी मस्कीम जी गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से इनके साथ हैं वीना मस्कीम चैतन्य मस्कीन मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता खुराना केशु रिधान खुराना और इन्हें मोहम्मद अजीज जी के जन्मदिन पर उनके गाए गीत और जानकारी अच्छी लग रही है लवली सॉन्ग से आगाज आपके आ जाने से। जी हाँ देखिए वो गाना तो इनका बहुत ही बेहतरीन गाना है। और ये और हमारे साथ कौन है संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव इन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है शुक्रिया। हरजिंदर सिंह छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता गांव नधाना पंजाब से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद अजीज साहब की तो 80 का जो दशक था वो हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम दौर माना जाता है। एक और जहाँ एक और किशोर कुमार का जादू था तो दूसरी ओर नई पीढ़ी के गायक अपनी पहचान बना रहे थे। इन्हीं के बीच मोहम्मद अजीज ने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कल्याण जी आनंद जी पप्पी लाहिड़ी अनु मलिक आनंद मिलिंद जैसे लगभग सभी बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन मिथुन चक्रवर्ती अनिल कपूर सनी देओल हो या गोविंदा हर बड़े अभिनेता पर इनकी आवाज़ खूब जची। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे सिर्फ गीत नहीं गाते थे वे पर्दे पर दिख रहे किरदार की आवाज़ बन जाते थे और एक ऐसा ही किरदार था किसका खुदा गवाह में किसका अमिताभ बच्चन का। तो आइए हम सुनते हैं फिल्म खुदा गवाह का ये गीत।

जो गाने आपको पसंद आ रहे हैं यकीन मानिए वो भी हमने बहुत दिल से चुने हैं हमारे आज के कलाकार के गाने, क्योंकि उनकी गायकी की जो बात है ना वो उनकी अलग अलग गानों में आपको नजर आएगी। ये जो गाना आप सुन रहे थे इसमें उनका साथ दिया था कविता कृष्णमूर्ति ने। और देखिए हमारे साथ ना हमारे बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, खूब प्यारी प्यारी बातें लिख रहे हैं। तो देखिए फिल्म खुदा गवाह का जो गाना है इसके बारे में लिख रहे हैं ज्योति मक्कड़, संदीप मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से। फिर हमारे साथ ये है हमारे दोस्त, जी हाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत बढ़िया गाने हैं, शुक्रिया। मोहम्मद अजीज को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं राधा कृष्ण, नवल किशोर, शुभलता, मधु, प्रेम सागर, और ये है खजाना गीत अमृतसर से। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर हमारे साथ हमारे दूसरे दोस्त हैं देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया और पोता है इनका मास्टर अल कबीर। प्रस्तुतकर्ता सोनाली जी को सप्रेम नमस्कार करते हैं, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, शुक्रिया शुक्रिया। और ये लिख रहे हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ डांडी लोहारा बालौद छत्तीसगढ़ से। फिर हमारे साथ ही संजय ढिंग्या, नमन ढिंग्या, अपार ढिंग्या, और इन्हें भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। आप हमारे संग बागपत उत्तर प्रदेश से हैं। सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ है अनीता मुखी, सिमरन मुखी सोनीपत से। और ये भी मोहम्मद अजीज साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। दीदी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, भाई आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये लिख रहे हैं मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी। और इसके साथ है हमारे साथ पी एस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर, मलकापुर से है नारायण इंगली, सोपान ताड़ी, आशीष मुरहेकर, और इन्हें मोहम्मद अजीज का कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। फिर है तुलसी मस्कीन जी, लिख रहे हैं होस्ट मैडम सोनाली जी गुड आफ्टरनून, आज के एक ही कलाकार में मोहम्मद अजीज के बारे में अच्छी जानकारी आपको अच्छी लग रही है, पेशकश सुपर, शुक्रिया। ये है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा चंडीगढ़ से है, राहुल खुराना, रविता खुराना, केशु खुराना। तो प्रकाश वर्मा जी हैं, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, सभी हमारे साथ जुड़े हैं। और देखिए हमारे साथ कौन जुड़ा है, ये है जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ बिल्कुल आप जुड़े हुए हैं, आप कहाँ छूटेंगे हमसे। और ये लिख रहे हैं कौन, ये है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। फिर हमारे साथ कौन जुड़ा है, ये है इसहाक मोहम्मद साहब। और आज के हम सफर में हम भी हैं आपके हम सफर, बिल्कुल आप भी हमारे हम सफर हैं। तो ये हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा।

देखिए आप सभी हमारे साथ लगातार बने हुए अनिल मोहन जी हैं, उषा मोहन टिलनायक और इन्हें भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब की। अब देखिए मोहम्मद अजीज की गायकी की एक और विशेषता थी उनके ऊंचे सुर पर सहज पकड़। चाहे देशभक्ति का गीत हो या रोमांटिक धुनों, उत्सव का माहौल हो, उनकी आवाज हर रंग में ढल जाती थी। यही कारण है कि उनके गाय गीत आज भी श्रोताओं की पहली पसंद है। तो अब मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ फिल्म आवारगी का एक गीत जिसमें इनका साथ दिया है लता मंगेशकर ने।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं गाना फिल्म आवारगी से, और इसमें इनका साथ दिया लता मंगेशकर ने, और हमारे साथ आप लोग दे रहे हैं लगातार। कौन है हमारे साथ हुए हैं? गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, और इन्हें प्रोग्राम में जानकारी अच्छी लग रही है, धन्यवाद। फिर कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया, शानदार प्रोग्राम आपने पेश किया, बेहतरीन बातें बताई। देखिए धर्मेंद्र जी, यहाँ पर आज मैं बाजी मार गई ना, आज आपने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन थैंक यू, आपको प्रोग्राम अच्छा लगा इसके लिए। आप हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, और हमारे साथ हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, और फिर हमारे साथ कौन है? जी हाँ, ये मोहम्मद अजीज साहब की, जी के सभी सॉन्ग सिलेक्शन जबरदस्त, लाजवाब है, आपकी आवाज अच्छी है, शुक्रिया। ये कौन लिख रहा है? अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन जाफर, सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा, चानेसर गोट कराची से, शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो देखिए, अब हम कार्यक्रम में उस जगह पर आ गए हैं कि अब हम आपके साथ और ज्यादा बातें नहीं साझा कर पाएंगे, बस लेकिन चलते चलते ना मैं आपको इतना बता दूं कि इस कलाकार को हमने 4 दिसंबर 2018 को खो दिया। मोहम्मद अजीज दुनिया से विदा हो गए, लेकिन कलाकार कभी भी विदा नहीं होते, हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। और बस आपको इतना बता दूं, चलते चलते उनके एक गाने के साथ आपको छोड़ रही हूं, और ये गाना भी बहुत अच्छा है, बहुत अलग सा है, आप ये सुनिए और आगे निकलते हैं फिर, और मुझे इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए, आपकी रेडियो हम सफर सुना ली, इजाजत चाहूंगी, नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्र प्रस्तुत चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजे हैं और रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपकी दोस्त अर्चना गोयल और अगले आधे घंटे में हम चलेंगे हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर में जहां हर धुन दिल में उतर जाया करती थी और हर गीत एक कहानी कहता था। आज हम आपको सुनवाएंगे 60 के दशक के कुछ ऐसे अमर गीत जिनके पीछे छिपे हैं दिलचस्प किस्से, यादगार घटनाएं और संगीत की अनसुनी बातें। कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ आवाज लता मंगेशकर और रफी साहब की फिल्म आरजू से।

दोस्तों, ये गीत जितना मधुर है इसकी रिकॉर्डिंग भी उतनी ही खास रही। संगीतकार शंकर जयकिशन चाहते थे कि गायिका लता मंगेशकर की आवाज में रूठने की मासूमियत साफ झलके। रिकॉर्डिंग के दौरान कई बार सिर्फ एक मुस्कान का एहसास आवाज मिलाने के लिए टेक दोहराए गए। कहते हैं कि अभिनेता राजेंद्र कुमार इस गीत को अपनी पसंदीदा फिल्मी धुनों में गिना करते थे।

और अब बात करते हैं आराधना फिल्म का वो गोल्डन गीत जिसने हर युवा दिल की धड़कनों को तेज कर दिया था। जी हाँ, किशोर कुमार का गाया गीत मेरे सपनों की रानी। इस गीत की शूटिंग अपने आप में एक रोमांचक कहानी है। दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन पर फिल्माया गया यह गीत उस समय तकनीकी दृष्टि से काफी चुनौतीपूर्ण था। अभिनेता राजेश खन्ना जीप में थे और अभिनेत्री शर्मिला टैगोर चलती ट्रेन में। एक और रोचक तथ्य यह है कि इस गीत को किशोर कुमार की आवाज ने नई ऊंचाइयां दी और इसके बाद किशोर कुमार का दौर तेजी से आगे बढ़ा।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत सुना और अब आपको सुनवाते हैं वो गीत जो हिंदी फिल्मी गीतों में अमर गीतों में गिना जाता है। फिल्म वो कौन थी का लग जा गले। दिलचस्प बात यह है कि संगीतकार मदन मोहन की बनाई इस धुन को शुरू में बेहद सरल समझा गया था, लेकिन जब लता मंगेशकर ने इसे अपनी आवाज दी तो ये गीत क्लासिक बन गया। गीतकार राजा मेहंदी अली खान ने शब्दों में बिछड़ने की पीड़ा को इतनी खूबसूरती से पिरोया कि आज भी ये गीत हर पीढ़ी को छू जाता है।

0: आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज और मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल।
1: कहीं करती होगी
0: यह आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की फिल्म है फिर कब मिलोगी।

और दोस्तों अब बात करते हैं संगीतकार ओपी नैयर की। उनकी धुनों में हमेशा एक अलग लय होती थी। फिल्म मेरे सनम का पुकारता चला हूं मैं, इस गीत में सड़क पर चलते हुए आजादी और मस्ती का एहसास पैदा करने के लिए विशेष ताल वाद्यों का इस्तेमाल किया गया था और मोहम्मद रफी की खुली आवाज ने इस गीत को सफर का स्थायी साथी बना दिया।

दोस्तों, 60 के दशक में गीतों में महिलाओं की स्वतंत्र सोच को भी दर्शाया गया, जैसे कि गाइड फिल्म का गीत आज फिर जीने की तमन्ना है। एसडी वर्मन के संगीत और शैलेंद्र के शब्दों ने इसे सिर्फ गीत नहीं बल्कि जीवन जीने का संदेश बना दिया। बताया जाता है कि अभिनेत्री वहीदा रहमान ने इस गीत की भाव भंगिमा पर विशेष मेहनत की थी, ताकि रोजी के चरित्र का आत्मविश्वास पूरी तरह उभर कर आए।

कार्यक्रम के आखिर में बात करते हैं सूरज फिल्म के उस गीत को जो आज भी उतना ही सदाबहार है जितना उस दौर में। ये गीत शादी ब्याह और खुशियों का पर्याय बन गया। मोहम्मद रफी की आवाज और शंकर जयकिशन का संगीत आज भी इसकी ताजगी बनाए हुए है।

दोस्तों 60 का दशक सिर्फ फिल्मों का नहीं बल्कि भावनाओं का भी स्वर्णिम दौर था। उस समय गीत बनते नहीं थे, जिए जाते थे। हर धुन में मेहनत थी, हर शब्द में एहसास और हर आवाज में सच्चाई। इसलिए 6 दशक बाद भी ये गीत हमारे दिलों में उसी तरह गूंजते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल आपसे अनुमति चाहूंगी, इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाते जाते याद रखिए, अच्छे गीत कभी पुराने नहीं होते, वे बस नई यादों के साथ फिर लौट आते हैं। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहाँ पे कि वो काम कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे, तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे। अब वो दोनों अकेले रहते हैं, ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान ले कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से यानी जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है। एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पा रखकर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा।

0: माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते, अपने ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं, जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं, दो परिवारों, कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी
1: बिल्कुल
0: इस मामले में बहुत सोच समझ कर हमें निर्णय लेना चाहिए।
1: जी। अच्छा, एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती है कि मेरी एक सखी है, उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सब ने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर हैं और अब जहाँ वो ससुराल में गई हैं तो वहाँ ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करें, घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है, लेकिन फिर भी समझदारी ज्यादा बड़ों में होनी चाहिए ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुश ही नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए है, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल, थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
0: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी, कि ये सब बातें कहने की है, पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपनी जिंदगी के उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी
1: बिल्कुल
0: करना बहुत अच्छी बात है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए, यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला आती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
1: बिल्कुल। और आज के जमाने में जहां इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना
0: बहुत
1: अत्यंत
0: जरूरी है।
1: आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियां, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से ही, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की
0: ले
1: ले
0: सकती है,
1: सकती है,
0: अपनी
1: पा
0: इच्छा
1: सकती
0: पूरी
1: है,
0: कर सकती
1: अपनी
0: है,
1: इच्छा पूरी कर सकती है, न सिर्फ अपनी, वो परिवार की भी इच्छा पूरी
0: हाँ
1: कर
0: पूरी
1: लेती
0: कर
1: है।
0: सकती है,
1: और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता, उस
0: पूरे परिवार
1: परिवार को
0: का।
1: होता है।
0: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने
1: बिल्कुल
0: भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, ने पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे, हम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
1: बिल्कुल,
0: और अब गाना सुन ले, एक
1: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
0: सुनते हैं।

0: आसमां तो झूम रहा है अभी, है ना।
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा।
1: अभी कैसे आ सकती है? अभी तो हमारी सखियां साथ में है भाई।
0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती। बहुत बार ऐसा होता,
1: होता तो है,
0: है ना। हाँ। पर नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई कि या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है।
1: उसके
0: तो
1: बारे में
0: सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूँ, फिर ये क्यों बोल दिया, इस तरह से होता है बहुत बार।
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोएंगे तो अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही हैं उसमें भी असर दिखेगा, या फिर आप चिड़चिड़े होंगे या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आपकी दिखाई देगी।
0: और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होता है कि हमारी नींद नहीं हुई तो हम सामने वाला बराबर पहचान लेगा कि आपकी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है, आप ठीक से नींद नहीं ली है,
1: बिल्कुल
0: आप हमेशा की तरह फ्रेश नहीं दिख रही है, आप थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही है, तो शायद आपकी नींद नहीं हुई है। और पूरा गुस्सा फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पतिदेव पर निकल सकता है, पतिदेव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है।
1: ऐसा अक्सर हो ही जाता
0: है ना,
1: जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में और हम बिना छोटी सी बात पे, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि रात को, रोज रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, इस तरह के कभी 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है। ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वही बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको सोने से 1-2 घंटे पहले दूर रख दीजिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है। तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से ये गाकर सुनाता हूँ, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धर्म पत्नी तुरंत कहती, अजी छोड़ी, आप तो घोड़े बेचकर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना ही भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल। और अगर

0: आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें। जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है, दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को, कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं, वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत जरूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय, रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर जरूर
1: रहना
0: होना
1: चाहिए।
0: चाहिए।
1: एक साथ ही लिखा है, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो, कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी, तब है ना एक नहा ले न, सोने से
0: बिल्कुल
1: पहले
0: बिल्कुल।
1: नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नरम मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो तो नींद जल्दी से आ जाती है।
0: बिल्कुल। और आपने जो ये बात करी ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी, जो गादी होती है वो और तकिया आरामदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह हो कि वो शरीर को पूरी तरह से
1: आराम दे।
0: सपोर्ट दे और आराम दे।
1: और अब गाना सुन ले।
0: चलिए

हमारी एक सखी ये कहती हैं कि एक और जरूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए। तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ। उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही हैं कि आप भी

0: ये हमको 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार, नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

हेलो दोस्तों, मौसम ले रहा है अंगड़ाइयाँ, पूरी हो रही है बरसात में भीगने की ख्वाहिश। विविध भारती के चाहने वालों की तमन्ना भी पूरी होगी, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं जयंत पात्रिकर और ये है आज का पहला कॉल।

0: लाइन के काम करता हूँ मैं।
1: मिस्त्री लाइन मतलब?
0: तो मकान सर।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
1: जो अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती
0: जी, सुनते
1: हैं।
0: जी सर।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए पवन कुमार जी, क्या सुनना चाहते हैं आज?
0: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
1: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: इसमें सर मेरे खास एक मित्र परम दोस्त है पन्नालाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश अपने भाई पन्नालाल सेन तक।
1: कहाँ रहते हैं पन्नालाल जी?
0: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
1: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
0: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: हाँ, मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है कि सर, बैंक स्पॉन्सरशिप से बोल रहे हो आप?
0: जी,
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ, आपका तो बहुत पुराना सोचा हूँ मैं, तो 50 साल से रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
1: हवा में सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश, आलो फरमाइश
0: जी,
1: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं? पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: पुराने गाने का शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने के शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल।
1: ताज मोहम्मद जी, बरकत खां और अकबर खां और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी, दारू भाई मेघवाल, हमारे दोस्त है, रेडियो श्रोता है, नियमित श्रोता है ये।
0: जी। तो महबूब भाई, इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
1: हाँ जी, है हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
0: कौन सा गाना?
1: ये है, तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो।
0: खानदान फिल्म का? अच्छा जी
1: जी सर, नूतन सुनिश्चित फरमा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए महबूब खान साहब। ये रहा आपके और आपके दोस्तों की पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलम मंडी छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ साहेब जी।
0: बोलिए बंधु साहब, कैसे हैं?
1: बस पात्रीकर जी, बस देखो हम यहाँ है और आप मुंबई के स्थित जगहों पर है।
0: जी
1: हम गुलम मंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके ऐसे वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी, एक बात बताइए, आपके संभाजी नगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है।
0: क्या बात है,
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसे हल रहे हैं कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है।
0: जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है आज का आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा
1: अरे
0: जो
1: साहब, वो तो
0: मौसम की
1: गाना
0: बात
1: ऐसा
0: करे।
1: है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ, 1943 में एक फिल्म बनी थी तानसेन, इसमें स्वयं कुंदनलाल सहगल साहब और
0: हाँ
1: खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी।
0: सहगल
1: अब तो
0: साहब,
1: बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना, तो साहब फिल्म इतनी चली थी है और इसके अंदर के गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और KL सहगल साहब ने गाया है और दृश्य इतना सुंदर है बंधु जी, मैं क्या बताऊं। ये फिल्म जितने बार भी देखे होंगे आपने या ना देखे होंगे तो देखना जरूर।
0: जी
1: क्या सुंदर अभिनय है कुंदन लाल सहगल साहब का और खुर्शीद का, स्वयं अभिनेत्री।
0: जरूर
1: इनके रोल
0: जरूर।
1: है घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर
0: मोरे
1: मोरे
0: सज्जन
1: सजन
0: आ
1: आ
0: जा।
1: जाना। क्या गीत है, जितने बार सुनो ऐसा लगता आग बंद करो और बैठ जाओ तो सब नए रम्य दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे साहब जी, और इसके जो है संगीतकार खेमचंद प्रकाश।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जयंत
0: नमस्कार।
1: जी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ, और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि विविध भारती की टीम जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी, आपका नाम तो बताइए।
1: जी, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ सर। श्रीनगर का
0: अच्छा,
1: मौसम तो बहुत ही अच्छा है, आजकल टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी। और बताइए, विविध भारती से कब से है आपका जुड़ाव?
1: विद भारती से जुड़ा है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21
1: जी
0: साल हो
1: सर,
0: गए।
1: जी बिल्कुल
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे?
1: जी, जब से होश संभाला है सर विविध भारती सुना है तब से।
0: अच्छा। सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा, उसमें
0: ओके।
1: हर दिन एक नया प्रोग्राम होता है सर।
0: हाँ
1: कभी सेलुलॉइड के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हो तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने किया होता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
0: जी। और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है जिसके लिए
1: जी
0: आपने
1: बिल्कुल
0: कॉल
1: सर,
0: किया है।
1: बिल्कुल
0: बताइए क्या सुनना
1: बिल्कुल
0: चाहते हैं?
1: बिल्कुल। और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मन चाहे गीत।
0: तो आपने खत
1: जी
0: भेजे
1: सर,
0: कि नहीं पंचायत गीत के लिए?
1: जी सर, मैंने खत भेजा है सर। जी,
0: चलिए बताइए आज के लिए कौन सा गीत आपने सेलेक्ट
1: फिल्म
0: किया?
1: का नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर ना
0: अच्छा
1: जाने।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार
0: नमस्कार,
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बोलिए राकेश जी।
1: मेरे बात में कॉल लग गया मेरा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और आप जितने भी मेरे बात के प्रोग्राम आते हैं हेलो फरमाइश तो सुनते हैं और मन चाहे कि भी आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम विविध बात के सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा जानकर के। और राकेश जी ये बताइए, शिमला में क्या करते हैं आप?
1: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो करते
0: अच्छा
1: हैं, और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है अभी तो सैंपल आ गए हैं, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं सेब के,
0: हाँ।
1: और अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तोड़ने के लिए आ जाएंगे।
0: अच्छा, साल में एक बार आते हैं
1: सेब
0: पेड़ों को
1: तो
0: फूल?
1: साल में एक बार आते हैं, और कहना चाहता हूँ कि जो

0: आप तक जो शेयर मिलते हैं और स्टोरेज की वजह से जो है मिल जाते हैं, तो तब जाके ये पूरे भारत में पहुंचते हैं। कई सेब जो होते हैं जो स्टोरेज की हो जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा आपके बाग तो, के सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
0: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं, अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर विदेश भी भेज देते हैं, और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है, महाराष्ट्र और बम्बई में।
1: अच्छा अच्छा तो हम जो अब सेब खा रहे हैं उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
0: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पता है क्या कैसी होती है, क्योंकि सेब तो कश्मीर से भी आते हैं और हिमाचल से भी आते हैं, लेकिन ये है कि कश्मीर से लेट आते हैं, हमारे हिमाचल के जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं।
1: जल्दी आ जाते हैं।
0: मैं कहना चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक केंद्र भी है, और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम है गुंडा और तहसील कोटखाई, और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है, मैं 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं।
1: अच्छा जी, बताइए आज के प्रोग्राम के लिए आपने कौन सा गीत चुना है?
0: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना चुना है, और आईना बता कैसे ये गाना सुनना है।
1: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, और आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना।

0: मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है।
1: हेलो फरमाइश
2: जी। नमस्ते सर।
1: नमस्ते
2: जी सर, मैं सारी कराची से बात कर रही हूँ, बिजौरा से।
1: बिजौरा, ये गांव कहाँ पर है आपका?
2: सर सागर के पास में पड़ता है, सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: और सागर मध्य प्रदेश में सारिका राजपूत क्या करती हैं?
2: सर अभी तो कुछ नहीं करती, बस हाउस वाइफ हूँ, बच्चों को संभालती हूँ।
1: बहुत बड़ा काम है ये भी, और इसके साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए आप रेडियो सुनती है ना?
2: जी सर, विविध भारती सुबह से चालू होती है तो 11 बजे रात में बंद होती है।
1: अच्छा, और इसमें से सुबह से लेकर रात तक कौन सा प्रोग्राम आपको ज्यादा पसंद है?
2: सर मुझे छाया गीत ज्यादा अच्छा लगता है, और आज के मेहमान, पत्रकार सब सुनती हूँ मैं, हालू फरमाइश भी सुनती हूँ।
1: जी चलो, बहुत अच्छा लगा जान के आप इतना पसंद से, इतने चाव से सुनती हैं विविध भारती। बताइए आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
2: सर मुझे आज की तू का गाना सुनना है, मैं चाहूँ ना।
1: ये रहा आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: क्या लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है? लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है, कैसे करूं शिकायत हर सांस को तेरी चाहत है।
0: ओ हो, क्या बात है। और ये शेर कहने वाले हैं कौन? आप क्या नाम बताइए?
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत बात कर रहा हूँ।
0: अमरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताइए क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा साजन, और इसमें जो गीत मैंने चुना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: अच्छा जी, ये गाना आपने क्यों चुना, कोई खास बात है?
1: जी बिल्कुल खास बात है सर, ये गीत मुझे अच्छा लगता है और इसके वर्ड ऐसे हैं, अगर एक एक वर्ड को हम समझते हैं तो काफी अच्छा, दिल को सुकून देता चला जाता है।
0: चलिए तो फिर आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना। अमरदीप जी,

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार, मैं पप्पू
0: नमस्कार
1: ठाकुर
0: जी,
1: कटिहार थाना जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ।
0: बोलिए पप्पू जी, कैसे हैं
1: भैया
0: आप?
1: जी अपना बताइए।
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस श्रोताओं के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग जगह से आप लोग
1: जी
0: फोन करते हैं, तो आपके
1: जी जी
0: इलाके में मौसम कैसा है? बारिश पड़ रही है?
1: जी सर, आज कितने दिनों के बाद आज बारिश हुई है सुबह में। और मैं शहरी इलाका नहीं है, गांव का इलाका है हमारा, एक छोटा सा जिला है।
0: जी, पप्पू जी वहाँ गांव में आप क्या काम करते हैं बताइए।
1: गांव में सर मैं तो अभी बाहर गांव में काम करता था, अभी घर पे आया, 1 साल हो गया हमको। मैं दुबई, कतर और कांगो, एक अफ्रीका जगह है ना, वहां पे
0: जी
1: मैं काम किया है,
0: जी जी
1: मैकेनिक
0: जी
1: का काम मैं करता हूँ सर।
0: अच्छा, तो फिर अब पिछले
1: जी
0: साल भर से
1: जी
0: आप घर में हैं, तो यहीं अपना
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: नया काम धंधा शुरू करने का इरादा है?
1: जी हमारा एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहाँ पे। मेरा एक सपना था सर कि मैं कभी वेद भारती में मेरा कॉल लग जाए, हेलो फरमाइश में, उनसे मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था।
0: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया आपका।
1: मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2005-06 से जब रेडियो पे मैं सुनता था, हमारे बड़े पापा के पास एक फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था छोटा वाला, उसको हम शॉर्ट वेव पे उसको सुना करते थे। उस समय से मैं वेद भारती को बहुत चाहता हूँ सर, बहुत चाहता हूँ, बहुत भी सुनता हूँ, अभी मोबाइल पे सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपने,
1: जी, न्यूज एनआईआर वाला।
0: बहुत बढ़िया है।
1: कोई भी ऐसा अभी फरमाइश नहीं गया हो जो मैं नहीं सुना हूँ, और ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्डेड में मैं सुन लेता हूँ उसको।
0: बताइए पप्पू जी, आज के लिए आपने कौन सा गाना चुना है?
1: फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, मनोज कुमार सर पे फरमाया गया है, और गाना है पत्थर के सनम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना, रफी साहब की आवाज में है।
0: चलिए, तो आपके जो कॉल लगने की खुशी हो रही है आपको, उसके और दुगना कर देते हैं।
1: बहुत
0: तो सुनिए अपनी
1: हाय
0: पसंद का गाना
1: सवारी।
0: पत्थर के सनम फिल्म से।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हैं आप सर?
0: हम अच्छे हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं और अपना नाम बताइए पहले। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं फहीम बोल रहा हूँ, श्रीनगर कश्मीर से।
0: फहीम भाई बोलिए।
1: जी सर, आज आपसे पूरे 2 महीने के बाद बात हो रही है। हम
0: जी जी जी
1: इंतज़ार में रहते हैं कि कब हमारे 2 महीने कंप्लीट हो जाएं और हम आपसे बात करें और विविध भारती के चैनल VBS पे अपने पसंद के नगमे सुनें।
0: जी जी बाकी पूरे देश
1: जी
0: में
1: सर,
0: तो गर्मी का मौसम खत्म हो के अब बारिश शुरू होने वाली है, बहुत लेट
1: जी
0: हालांकि आई है, मगर श्रीनगर में कैसा है मौसम?
1: श्रीनगर में इन दिनों थोड़ी सी गर्मी है। यहाँ पे 40 दिनों का एक समय होता है, 30 जून से लेकर जो है फुल मंथ जुलाई तक रहता है। उन 40 दिनों को हम कश्मीरी में बारात बोलते हैं।
0: अच्छा
1: बारात के समय यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, और वैसे ही यहाँ पे 21 दिसंबर से लेकर फुल मंथ जनवरी तक 40 दिनों का एक और समय होता है, उसको हम कश्मीरी में चिलाई कलान बोलते हैं।
0: अच्छा
1: गर्मियों के 40 दिन बारात और सर्दियों के 40 दिन चिलाई कलान। ये 40 दिन 40 दिन जो है हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल होते हैं, गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से। तो अभी हम ऐसे समय में चल रहे हैं जो पे अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं बारात में चल रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों के बाद बच्चों की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में छुट्टी रहेंगी।
0: अच्छा तो ये बहरात में क्या कुछ खास, कुछ रवायत होती है, कुछ त्योहार होते
1: बारात
0: हैं?
1: के समय जो जी जी त्योहार भी होते हैं बहुत सारे। बारात के समय में यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, बच्चों को सब छुट्टियाँ मिलती है, तो हम कश्मीरी लोग भी जैसे आपके वहाँ पे आते हैं घूमने, हम भी यहाँ पे
0: जी
1: घूमने निकलते हैं बच्चों के साथ। तो बारात के समय हमें जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा ठंड ही रहती है, मौसम ठंडा ही रहता है। तो अभी हम गर्मियों को एंजॉय कर रहे हैं बारात के समय फैमिली के साथ,
0: फिर
1: फ्रेंड्स
0: भी
1: के साथ। हाँ
0: आपकी नज़र से वो
1: जी
0: गर्मियां हैं, मगर फिर भी एवरेज टेम्परेचर तो वहाँ 20 से कम ही रहता होगा।
1: हाँ जी हाँ जी, नॉर्मली 25-30 तक हो जाता है, और जिस दिन 30 होता है उसी शाम बारिश भी आती है। ये हमारे यहाँ पे स्पेशल एक बात है, जिस
0: हो
1: दिन
0: अच्छा
1: 30
0: अच्छा
1: होता है तो उसी शाम हल्की सी बारिश भी आती है, अगले
0: जी
1: दिन फिर से वही नॉर्मल 25-27 तक जाता है।
0: जी मुल्क के दूसरे इलाकों के लोग घूमने जाते हैं श्रीनगर, मगर श्रीनगर के रहने
1: हाँ जी
0: वाले
1: हाँ जी,
0: कहाँ जाते हैं घूमने? आप कहाँ आते हैं पूरे देश में?
1: हमारे यहाँ पे स्पेशली कुछ जगहें हैं कश्मीर में ही है, दूध पथरी नाम की जगह है, वहाँ पे हम जाते हैं। सोनमर्ग भी जाते हैं, पहलगाम भी जाते हैं,
0: नहीं
1: गुलमर्ग भी
0: आ,
1: जाते हैं।
0: नहीं वो तो है, आपके यहाँ आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब घूमने निकलते हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि देश के किस इलाके में जाए, क्या देखें?
1: हम ज्यादातर पसंद करते हैं एक तो बैंगलोर जाना, और दूसरा जो है ना हमारा थोड़ा मुंबई भी जाते हैं, और केरला भी जाते हैं यहाँ के लोग, और कोलकाता भी जाते हैं। देश के बहुत सारे, सबका टेस्ट अलग अलग है,
0: जी जी जी
1: बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं। जब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो इन्हीं जगहों पे जाना पसंद करते हैं। गोवा भी जाते हैं यहाँ से काम
0: चलो
1: के सिलसिले में भी और घूमने के सिलसिले में भी।
0: वाह वाह, बड़ा अच्छा लगा जान करके। और आपने टेस्ट
1: हाँ जी
0: सबका अलग होता है कहा, तो ऐसे ही म्यूजिक का टेस्ट सबका अलग होता है ना? तो
1: हाँ
0: अगर
1: जी
0: फिल्म म्यूजिक की बात की जाए, फिल्म संगीत की बात की जाए, तो आपका टेस्ट कैसा है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं दोनों नगमे पसंद करता हूँ, पुराने भी सुनते हैं नए भी सुनते हैं। लेकिन अभी का जो ये हमारा अभी ट्रिप चल रहा है, हम भी घूमने निकले हैं,
0: जी।
1: तो मुझे एक वीर ज़ारा का नगमा बार बार याद आ रहा है, ये हम आ गए हैं कहाँ। लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा नगमा है। तो मैं यही हम अपने विविध भारती के चैनल पे सुनना चाहेंगे, और साथ में जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं जो अभी घूमने निकले हैं, वो कश्मीर के नज़ारे देख कर यही बोल रहे होंगे आपस में, अरे यार ये हम आ गए हैं
0: आ गए हैं
1: कहाँ।
0: कहाँ, क्या बहुत
1: जी
0: ही प्यारा गाना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को चुनने के लिए, और आपको हम सुनवा रहे हैं वीर ज़ारा फिल्म से यही गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी, कैसे हैं?
1: बस सर बढ़िया है, जब आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले का, भगवान का आशीर्वाद है, उसी की दुआ से सब कुछ चल रहा है ना?
1: बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो।
0: और मनोज नामदेव जी, आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: जी जी बिल्कुल सर, कामकाज बढ़िया चल रहा था। मैं अपने शॉप पर काम कर रहा था और फोन लगा रहा था, एक हाथ से काम कर रहा था तो लगाते लगाते लग गया फोन। और कहें कि सर आकाशवाणी मुंबई सर इतना अपार प्रेम हो चुका है सर, इतना अपार प्रेम हो चुका है कि रह ही नहीं सकते जी। कहो सर।
0: कौन सा प्रोग्राम सुने बगैर नहीं रह सकते?
1: सर जी आपके सारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, सुबह से रात 11 बजे तक आपका कार्यक्रम बराबर सुनते हैं सर।
0: जी, तो सुबह से लेकर
1: और
0: रात तक अलग अलग इरा के गाने हम बजाते हैं, अलग अलग युग के गाने बजाते हैं, है ना? पुराने
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: सर। और सोमवार को आता है कार्यक्रम सेहतनामा,
0: जी
1: और
0: जी
1: शनिवार को और रविवार को आपका मनचाहे गीत, इतना अच्छा कार्यक्रम लगता है सर, इतना
0: जी
1: अच्छा कार्यक्रम कि मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं आपको, और जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना आप पसंद करते हैं विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों को। और अब ये उत्सुकता है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने किस गीत की फरमाइश लिख रखी है अपने डायरी में?
1: बिल्कुल सर, डायरी में लिख रखी है, मूवी का नाम है विजयपथ और गाने की बोल रहेंगे, आइए आपका इंतजार है।
0: तो आपका इंतजार खत्म करते हैं और आपकी पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं।

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है, उनसे हमारा गर्वबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट करें। हमारा नंबर है 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर नोट करें, 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया जयंत पात्रिकर के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

0: केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर पर शाम के 5 बजने को है। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची ने कहा कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से जारी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया कि वे भारत द्वारा 3 दशक से पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के तिरुपति में किए गए राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के अनुरूप था। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई परियोजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजुलपुर में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा की। मतदान 30 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़े कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कथित तौर पर अवैध भूमि हड़पने की गतिविधियों में शामिल हैं।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन की विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलिथीन लाओ चाय पाओ नामक एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए, आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी। इसमें हमारी बात के अंतर्गत बात होगी पर्यावरण सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण और विश्व खेल पत्रकारिता दिवस का महत्व विषय पर भी बात होगी। डिजाइनिंग क्षेत्र में करियर के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। फिल्मी गाने तो हमारे युवा साथी सुनेंगे ही।

संध्या 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत और 6:05 पर पटना से हम रिले करेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन।

संध्या 6:10 पर किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा किसान वाणी। और इस कार्यक्रम में एक भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी, विषय होगा खेती में जाने से पूर्व कृषि यंत्रों की देखभाल। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर विकास सिंह। इसके अलावा कार्यक्रम में चर्चा होगी धान की खेती विषय पर और आज की नसीहत होगी वृक्ष लगाएं पर्यावरण बचाएं। संध्या 6:40 पर भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सांझ गीत। और संध्या 7:15 पर हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम होगा गुड इवनिंग रोहतास।

शाम 7:30 बजे पटना केंद्र से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की हलचल। 7:50 से आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम

रात्रि 9 बजे से आप सुनेंगे लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत और रात्रि 9:15 पर गजलों का हमारा कार्यक्रम होगा महफिल। रात्रि 9:30 पर विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार हम रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रसरंग कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी एल्बम सॉन्ग्स और रात्रि 10:30 कार्यक्रम होगा चित्रपट तराने। रात्रि 10:05 पर हम कल के

रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रसरंग कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी एल्बम सॉन्ग्स और रात्रि 10:30 बजे कार्यक्रम होगा चित्रपट तराने। रात्रि 10:05 पर हम कल के कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा समाप्त होगी। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। श्री यानवा पंचायत से ओम राजेश कुमार रंजन है यशस्वी मुखिया।
1: मैं राजेश कुमार रंजन, ग्राम पंचायत श्री आमा। हमने RWD के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्य सड़क से पक्की रोड तक हमने जुड़वाए, कुछ ग्राम पंचायत से कार्य करवाए, अभी वो सब गांव खुशहाल है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोहनपुर पंचायत से ओम रानी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
4: मेरा नाम है रानी देवी, मैं भागलपुर जिला को है। मेरे गाँव में तो पहले मैं 13 नंबर वार्ड का है। मेरा गाँव है सरैया, मोहनपुर पंचायत है। एक काम है उनकी, वही गली नली है वहाँ पानी फंस रहा है, वो पानी निकलना की जरूरी है उसका। यही काम बेसी खास बच्चे है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में होता है। ये ध्यान में रख के सुनिए तो एक नया आनंद आएगा।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से जजुआर मध्य पंचायत से ओम सुमंत नाथ ठाकुर बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मेरे यहाँ अस्पताल बनाया, मेरा ग्राम पंचायत तो कुपोषण मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, टीबी मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, एनीमिया मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, किसी भी गर्भवती महिलाएं की प्रसव के दौरान हमारे ग्राम पंचायत का खुद का अपना एम्बुलेंस है, जो कोई भी व्यक्ति को इलाज के लिए समय रहते गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बनेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: श्रोता, इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासर, अमर सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। बहरहाल, विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज में भक्ति रचना, और अब कार्यक्रम के अंत में हम सुनवा रहे हैं हरिहरन के स्वर में ये शिव भजन।

हरिहरन के गए इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे केंद्र से प्रस्तुत है युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम में हम अपने सभी युवा साथियों का स्वागत करते हैं। मैं हूं आज आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। नमस्ते दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी बात के अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण। जी हाँ दोस्तों, 1 से 7 जुलाई तक हम मना रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह, और बात करेंगे विश्व खेल पत्रकारिता दिवस का महत्व पर भी, और थोड़ी सी बात होगी डिजाइनिंग के क्षेत्र में करियर के बारे में। फिल्मी गाने तो हम सुनवाएंगे ही, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी बात पर्यावरण सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण और मानव जीवन का संबंध अत्यंत गहरा और अटूट है। प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक संसाधन दिए हैं, जिनमें पेड़ सबसे महत्वपूर्ण है। आज के आधुनिक युग में विकास की अंधी दौड़, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी धरती का प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। इस बिगड़ते संतुलन को सुधारने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण ही एकमात्र और सबसे प्रभावी उपाय है। दोस्तों, पेड़ पौधों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। जिस तरह फेफड़े हमारे शरीर को ऑक्सीजन देकर जीवित रखते हैं, ठीक उसी तरह पेड़ पूरी पृथ्वी को जीवन प्रदान करते हैं। वृक्षारोपण का अर्थ है नए पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। पेड़ न केवल पर्यावरण को सुंदर बनाते हैं, बल्कि यह समस्त जीव जंतुओं के अस्तित्व का आधार भी हैं। वनों के बिना मानव जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। दोस्तों, पेड़ पौधे पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखने में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का स्रोत। पेड़ प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और जीवनदायिनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़

हवा में मौजूद जहरीली गैसों, धूल कणों और धुएं को सोखकर वायु प्रदूषण को कम करते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। पेड़ इस गैस को नियंत्रित कर जलवायु परिवर्तन के खतरे को टालते हैं। और दोस्तों, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांध कर रखती है। इससे तेज बारिश और हवा के कारण होने वाला मृदा अपरदन रुकता है। पेड़ बादलों को आकर्षित करते हैं, जिससे समय पर और पर्याप्त वर्षा होती है। यह भूमिगत जल स्तर यानी ग्राउंड वाटर लेवल को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। वन लाखों पशु पक्षियों और कीट पतंगों का प्राकृतिक आवास भी है। वृक्षारोपण से वन्य जीवों का अस्तित्व सुरक्षित रहता है। दोस्तों, आज दुनिया भर में अनियमित मौसम, अत्यधिक गर्मी, बेमौसम बारिश और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। यदि हमने अभी कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध हवा और पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। केवल सरकार के भरोसे बैठकर पर्यावरण को नहीं बचाया जा सकता, इसके लिए जन आंदोलन की आवश्यकता है। हर नागरिक को अपने जीवन के विशेष अवसरों जैसे जन्मदिन या त्योहारों पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपनी धरती को फिर से हरा भरा और सुरक्षित बनाएंगे, ताकि आने वाला कल खुशहाल और स्वस्थ हो सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी बात पर्यावरण सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण। आगे हम बात करेंगे विश्व खेल पत्रकारिता दिवस का महत्व पर, लेकिन पहले हम सुनवा रहे हैं एक गाना।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर रटवारा पंचायत से ओम पूनम कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं पूनम कुमारी, ग्राम पंचायत किशनपुर रटवारा, प्रखंड आलमनगर, जिला मधेपुरा। जी मैंने काम करवाए है, अभी तो मेरा बाहरी इलाका है, कोसी कटाव से पीड़ित है। वहाँ तो रोड सालों आती है, सालों चली जाती है बह के, तो उसी को हम अभी तक में 25 से 30 हम मतलब कच्ची सड़क बनाए हैं, 10 से 15 पक्की सड़क में मैं 2 बार मुखिया बनी हूँ।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन

0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, एक बार फिर आप सबका युवाणी कार्यक्रम में स्वागत है। विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में सिर्फ तुम फिल्म से गीत। गीतकार थे समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। चलिए अब बात करते हैं विश्व खेल पत्रकारिता दिवस का महत्व विषय पर। दोस्तों, यह विशेष दिन यानी कि विश्व खेल पत्रकारिता दिवस हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। यह विशेष दिन दुनिया भर के उन समर्पित खेल पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है, जो हमें खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर, रोमांचक विश्लेषण और खिलाड़ियों के संघर्ष की कहानियों से रूबरू कराते हैं। इसके इतिहास की बात करें तो इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन यानी कि AIPS द्वारा की गई थी। दरअसल 2 जुलाई 1924 को पेरिस ओलंपिक के दौरान AIPS की स्थापना हुई थी। इसी ऐतिहासिक संगठन की स्थापना की याद में और खेल पत्रकारिता में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 जुलाई को यह दिवस आधिकारिक तौर पर मनाया जाने लगा। दोस्तों, खेल पत्रकारिता केवल हार जीत के स्कोर बताने का तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के बीच एक मजबूत सेतु का काम करती है। एक खेल पत्रकार मैदान पर चल रहे खेल के साथ साथ उसके पीछे की रणनीतियों, विवादों और खिलाड़ियों के व्यक्तिगत जीवन की प्रेरक कहानियों को हमारे सामने लाता है। प्रिंट मीडिया, टेलीविजन से लेकर आज के डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक खेल पत्रकारों की मेहनत के कारण ही सुदूर इलाकों में बैठे प्रशंसक भी ओलंपिक, विश्व कप और अन्य घरेलू खेलों का सीधा रोमांच महसूस कर पाते हैं। दोस्तों, बदलते समय के साथ खेल पत्रकारिता का स्वरूप बहुत व्यापक और व्यावसायिक हो गया है। आज पत्रकारों के सामने केवल त्वरित खबरें देने की ही चुनौती नहीं है, बल्कि खेल संगठनों के भीतर की राजनीति और भ्रष्टाचार को उजागर करने जैसी खोजी पत्रकारिता की भी जिम्मेदारी होती है। यह दिन पत्रकारों को निष्पक्ष, नैतिक और सत्यनिष्ठा के साथ रिपोर्टिंग करने की याद दिलाता है। तो दोस्तों

तो हम कह सकते हैं कि विश्व खेल पत्रकारिता दिवस हमें यह सिखाता है कि खेल पत्रकार भी खेल संस्कृति को जीवित रखने और इसे बढ़ावा देने में खिलाड़ियों जितने ही महत्वपूर्ण हैं। हमें इस दिन को उनके कठिन परिश्रम, जुनून और समाज में खेल भावना का प्रसार करने के उनके प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी बात विश्व खेल पत्रकारिता दिवस का महत्व, क्योंकि आज पूरी दुनिया विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मना रही है। चलिए, कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं फिर एक गाना।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर लोहुआर पंचायत से ओम राकेश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: यशस्वी मुखिया राकेश कुमार शाह, ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था, जिसके चलते मेरे यहाँ नागरिकों को बहुत कठिनाई होती थी, प्रखंड जाकर काम कराना पड़ता था। मैंने ग्राम पंचायत में अपने ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। अब पंचायत सरकार भवन के एक छत के नीचे ही मेरे पंचायत के लोगों का सारा काम हो जाता है। अब प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: दोस्तों, बीघापन से पहले आप सुन रहे थे जावेद अली और साधना सरगम की आवाज़ों में करतूत फिल्म से गाना। और अब चलिए बात करते हैं डिजाइनिंग के क्षेत्र में करियर के बारे में। दोस्तों, डिजाइनिंग के क्षेत्र में करियर बनाना आज के समय में एक बेहद आकर्षक और बेहतरीन विकल्प है। ये क्षेत्र उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो रचनात्मक हैं और कुछ नया सोचना पसंद करते हैं। आजकल मार्केट में हर चीज़ के लिए डिजाइनर्स की भारी मांग है, जैसे फैशन, ग्राफिक्स, इंटीरियर और वेब डिजाइनिंग। इस क्षेत्र में सफलता पाने के लिए नए ट्रेंड्स की समझ और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना ज़रूरी है। एक अच्छा डिजाइनर बनने के लिए आप 12वीं के बाद डिजाइनिंग में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इस करियर में नाम और पैसा और काम करने की पूरी आज़ादी मिलती है।

तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी बात डिजाइनिंग के क्षेत्र में करियर के बारे में। और अब हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम में एक एल्बम सॉन्ग्स।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रामजान लांगा की आवाज़ में ये एल्बम गीत। और अब इसी के साथ युवाणी कार्यक्रम समाप्त होता है। दीजिए इजाज़त अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्ते।

युवा साथी अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युवाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। इस समय शाम के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं सुधा सिन्हा के स्वर में ये बरसाती भोजपुरी लोकगीत।

0: सुधा सिन्हा के स्वर में आप सुन रहे थे ये बरसाती भोजपुरी लोकगीत। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। अब हम कुछ ही पलों में पटना केंद्र से रिले करेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी पटना है। अब रउआ संजय सिंह से भोजपुरी में समाचार सुनी। निर्वाचन आयोग पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तारीख के घोषणा कर देले बा। ए सीट खातिर 30 जुलाई के वोट डालल जाई। चुनाव के अधिसूचना 6 जुलाई के जारी होई आ वही दिन से नामांकन पत्र भरे के काम भी शुरू हो जाई। उम्मीदवार 13 जुलाई तक नामांकन कर सकी हैं। 14 जुलाई के नामांकन पत्रन के जाँच हुई आ नाम वापस लेवे के आखिरी तारीख 16 जुलाई तय कैल गई बा। वोटन की गिनती 3 अगस्त के हुई। बता दें कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देवे के चलते इस सीट खाली भइल रहे, जेकरा वजह से ई उपचुनाव हो रहल बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले बाड़न कि राज्य के सब प्रमंडल में निगरानी के विशेष अदालत बनावल जाई। एकरा साथे साथे हर जिला में निगरानी थाना और सब अनुमंडल में निगरानी ओपी खोलल जाई। श्री चौधरी पटना में बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस के मौका पर आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करत रहले। मुख्यमंत्री कहले कि सरकार पारदर्शी शासन खातिर TTT यानी टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के सिद्धांत पर काम कर रहल बिया। उ लोगन से भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनावे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवे के अपील कैले। एह मौका पर मुख्यमंत्री बिहार सतर्कता जागरूकता हफ्ता के शुरुआत भी कैले। हमार संवाददाता के मुताबिक बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस पर राज्य सरकार के सब दफ्तरन में कर्मचारी लोगन के सतर्कता के शपथ भी दिलावल गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक कॉरिडोर के तहत मलाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा के विस्तार के हरी झंडी देखौले। साथ ही उ खेमनीचक और मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन भी कैले। अब पटना में मेट्रो रेल सेवा के विस्तार ISBT से मलाही पकड़ी तक हो गई बा। ई पूरा रूट के लंबाई 6.2 किलोमीटर बा और ई दूरी सिर्फ 15 मिनट में तय हो जाई। ISBT से मलाही पकड़ी तक के भाड़ा 30 रुपया तय कैल गई बा। इस मौका पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा समेत कई गो गणमान्य लोग मेट्रो में यात्रा भी कैले। राज्य में आवे वाला 14 अगस्त तक 1 करोड़ लोगन के TB स्क्रीनिंग करे के लक्ष्य रखल गई बा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत मिशन मोड में अभियान चलावे के ए लक्ष्य के हर हाल में पूरा करे के निर्देश देले बाड़े। टीबी मुक्त भारत अभियान के समीक्षा बैठक में बतावल गई कि राज्य के 2.76 करोड़ लक्षित आबादी में से अब तक 39 लाख लोगन के जांच हो चुकल बा, जे कुल लक्ष्य के सिर्फ 14% बा। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम पटना से शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग के अवर सचिव आमोद मिश्रा के 20,000 रुपया घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेले बा। गिरफ्तार अधिकारी एगो रिटायर कर्मचारी से एरियर के भुगतान करावे के बदला में घूस लेते रहे। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एगो भारी चट्टान गिर गईला से 7 गो प्रवासी मजदूरन के मौत हो गई बा। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक मरे वाला लोगन में बिहार के रहे वाला कई गो मजदूर भी शामिल बाड़न। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन एह दर्दनाक घटना पर गहरा दुख जतौले बाड़न। ऊ मरे वाला लोगन के परिवार के प्रति अपन गहरा संवेदना व्यक्त कैले बाड़े। वही जे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी एह हादसा पर गहरा दुख जतावत शोक में डूबल परिवारन खातिर अपन संवेदना जतौले बाड़न और ईश्वर से एह दुख के घड़ी में शक्ति देवे के प्रार्थना कैले बाड़न। सारण जिला के अमनौर थाना क्षेत्र के नरसिंह भानपुर गांव में पोखरा में नहाए के दौरान डूबे से 2 गो किशोरी के मौत हो गई। औरंगाबाद जिला के पैथू थाना क्षेत्र के भताही मोड़ के पास एगो तेज रफ्तार 4-चक्का गाड़ी के चपेट में आवे से 2 गो छात्रा लोगन के मौत हो गई। पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर थाना क्षेत्र में एगो किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट से भयानक आग लग गई। एह अगलगी में लाखन रुपया के संपत्ति जर के राख हो गई और एगो युवक गंभीर रूप से झुलस गई। मॉनसून के सक्रिय होए से आज पटना, बक्सर, सारण, वैशाली, बेगूसराय और खगड़िया समेत कई जिलन में झमाझम बारिश भइल बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला

24 घंटा के दौरान कैमूर के अधवारा में सबसे बेसी 86.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज कर गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान बा कि काल राज्य के ज्यादातर हिस्सा में बारिश होखे के संभावना बा। राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम हिस्सा में कुछ जगह पर धूल भरल आंधी के साथ वज्रपात के चेतावनी जारी कल गई बा। महिला और बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खातिर नामांकन मंगले बा। ये पुरस्कार 5 से 18 साल के लयिका लयकिन के असाधारण कामयाबी और उपलब्धि खातिर दिहल जाला। नामांकन पत्र जमा करे के अंतिम तारीख 31 जुलाई बा। मंत्रालय बतौले बा कि एकरा खातिर नामांकन awards.gov.in पोर्टल पर कइल जा सकेला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खेलकूद, समाज सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में सबसे बढ़िया काम करे वाला लयिका लयकिन के दिहल जाला। एकरा अलावा ई

0: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खेलकूद, समाज सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में सबसे बढ़िया काम करे वाला लयिका लयिकिन के दिहल जाला। एकरा अलावा ई पुरस्कार कोनो मुश्किल घड़ी में असाधारण साहस और बहादुरी देवे वाला बच्चा के भी देहल जाला। एकरे साथ आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। हमारे केंद्र से आरंभ होता है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान बाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोता भाई बहन लोग के रज्जू भाई के तरफ से नमस्कार आ रनिया बहन रौरा के भी नमस्कार।
1: नमस्कार रज्जू भाई, साथे साथे सभी श्रोता लोगन के रनिया बहन का नमस्कार। रज्जू भाई
0: जी,
1: देखिए काले से मौसम जोन बाटे रुख अपन बदल लेले बाटे, पुन्नी बरखा होखे लगल, एकदम मौसम जोन बाकी ठंडा गई बटे
0: जी,
1: जोन उमस भरल गर्मी रहे वो एकदम तनी खत्म,
0: राहत मिला,
1: राहत ढेर राहत मिलल बटे। लेकिन यह राहत के साथे साथे अपने साथे कई गो समस्या भी बरसात का दिन लेके आवेला। जैसे कि मान ले कि अभी बरसात में इघरी जवन पानी पड़ेला धरती पर, तो धरती के भीतर जन तरह तरह के जीव जंतु रहे ना, उ हर जगह निकलत रहे ना, आ अधिकतर देखब कि बरसाते के समय में जो घास पात भी निकलेला। तो भाई वह जीव जंतु से हमने के घास पात पर अगर चलत आने जाए तो सावधानी बरते के चाहिए।
0: हाँ, इतने ना देखिए जब पहिलका पानी होला ना तो जौन एक धरती पर पड़ेला तो एक भाप निकलेला, एक से हमने के फोड़ा फुंसी गमहोरी भी होला, तो एक में भी हमने के कोशिश करे के चाहिए कि बरसात के पानी से अभी थोड़ा बचल जा।
1: हाँ,
0: आ बाल बच्चन के भी बचा के रखल जा, मतलब कहा जला कि अपने रूरा निरोग रहब तभी ना कोई के मददो करब, आ ऐसे हमने के कोशिश करे के चाहिए कि बदलत मौसम में अपन सावधानी बरतल जा। इतने ना देखी मान ली कि कोई के कूलर में पानी पहले से बचल बा तो ओकरा के भी हमने के निकाल के साफ कर देवे के चाहिए, कारण कि इस जौन पानी जम जाई बरसात के पानी टायर पर छत में जम सकेला, तो उ सब से हमने के साफ सफाई रखे से घर में जौन मच्छर फैले के संभावना बा।
1: इसमें देखिए डेंगू मच्छर ज्यादा ले ले
0: पनपेला से, तो इसमें हमने के कोशिश करे के चाहिए कि जल जमाव जौन घर में होके भले उरा कूलर में होके इस सब देख के साफ सुथरा रखे के चाहिए।
1: इतने नहीं देखी साफ सफाई अपने अगल बगल घर द्वार जो भी बाटे, इघरी देखी आम आदमी खा रहल बने बहुते, अब दुनिया भर के वो आम के चलते मक्खी घर में प्रवेश कर रहल बानी। इहो देखे में आवता काल देखी बरखा जब भइल तो तरह तरह के जोन उड़े वाली तितली होले सन उ सब एकदम बॉल के छेक लेले बड़े सन।
0: हाँ।
1: तो भाई इस सब के हमने के ध्यान रखे के होई। एकरे अलावा जवन भी आसपास जोन गंदगी बाटे, कूड़ा करकट जमा बाटे, चाहे गहरा बाटे, गड्ढा बाटे, ओकरो के भराव कर देवे के चाही, कूड़ा करकट के साफ सफाई करे के चाही, ताकि जोन बा उ सड़ करके हमने के तरह तरह के जोन दुर्गंध आवेला ओकरा से, तो उ हमने के सांस के जोन बा दूषित कर देवेला, एकरा से स्वास्थ्य जोन बा की खराब होला
0: जी। हाँ, निरोग रहे के सबसे बढ़िया तरीका बा कि अपनहु साफ रही और रउरा घर के भी जितना जगह जमीन

0: बा उस सब के भी साफ सुथरा रखें।
1: एक बात रजू भैया रुआ कहली हाँ कि बरसात के पहलका पानी से मने थोड़ा सावधानी बरते के चाहिए, ऐसे कि बहुत सारा लड़का औरत लड़की ऐसा होली कि पहले बरसात में छत पर भइल चाहे अंगना में भइल चाहे जहाँ भी मने भींग करके नहाए के बड़ा कोशिश करें।
0: जी जी जी
1: तो वह पर भी हमने के ध्यान देवे के पड़ी कि दूरस दिन भाई चली और गर्मी से एक बारी बरखा हो गई तो भाई ओकरा में हमने के फोड़ा फुंसी दर्द दिनाए दाद खाज खुजली होके के डर बना रहेला।
0: तो देखिए अब हम चाहते नहीं कि चले गए अपना कार्यक्रम की ओर।
1: बिल्कुल
0: यह कार्यक्रम में हम चाहते नहीं कि तनी तनी जानकारी अपना श्रोता भाई लोगन के दे दी
1: कहा का आज के किसान बाड़ी कार्यक्रम में बाटे कौची कौची लेके आयल बनी जाए तनी श्रोता भाई बहन लोग के जानकारी दे दहल जाओ ताकि कापी कलम किताब जो भी बा अपन ले करके बैठ जाइ हाँ ताकि जो भी रही अपन लिख ली हाँ।
0: जी देखी सबसे पहले नु हमने के अपना किसान भाई खाती कृषि पर आधारित खबर सुनल जाए आज की खबरों के अंतर्गत, फिर एगो खूब नीमन हमनी के एगो भेंट वार्ता सुनल जाए जवन कि हमनी के खेती बाड़ी से जुड़ल बातचीत बा कि खेती में सबसे पहले हमनी के कृषि यंत्र के देखभाल कैसे करे के चाहिए आ एकर कितना जरूरत बा एह बात खाती हमनी के एगो भेंट वार्ता सुनल जी जवना के भेंट वार्ताकार बानी डॉक्टर विकास सिंह आ यहाँ से भेंट कैले बानी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। फिर हमनी के एह घड़ी गांव घर में धान के खेती के तैयारी चल रहल बा, हर केहू चाहता ना कि हम समय से पहले ही अपन धान के खेत के तैयार कर ली जमना से कि समय पर धान के बिचड़ा जौन आदमी डलले बड़न उ जो तैयार होके आ तुरंत खेत में बोआ जा रोपा जाओ है ना। तो ओकर रोपाई के सही समय से हो सके एकरा खातिर आदमी एकदम अगुताइल बड़न आ कहल भी जाला देखी कि आगे खेती आगे आगे आ पीछे खेती भागे जोगे। तो हमनी के किसान लोग भी बाड़न कि जल्दी जल्दी अपन धान के बुआई कैल जा रोपाई कैल जा। एकरा साथे साथे हमनी के आज की नसीहत में यह धरती पर सब जीव के जीवे खातिर एगो सबसे जरूरी चीज बा जौन वृक्ष बा, मतलब वृक्ष एगो ऐसा चीज बा जवना के ऑक्सीजन से पूरा यह धरती के जीव सांस लेवेलन।
1: यानी कि वृक्षारोपण सप्ताह भी ये घड़ी चल रहा बाटे वन महोत्सव
0: एमे हमनी के समझे के कहल गई बा कि वृक्ष लगाई आ पर्यावरण बचाई, मतलब वृक्ष यदि लगाओ तनी तो रूरा पूरा वातावरण के ही एक तरह से शुद्ध कर तनी आ ये धरती के जितना भी जीव जंतु बढ़न मानव से लेकर के जीव तक सब कोई के रूरा एक तरह से सुरक्षा प्रदान कर तनी एकरा पर भी हमने के चर्चा कर ली। फिर एकरा बाद मौसम पर आधारित हमने के कृषि सलाह भी अपना श्रोता भाई लोगन के दिया जाए तो आई अब हमने के कृषि पर आधारित खबर सुन ले जाओ आज की खबरों के अंतर्गत।
1: जी जी जी देखिए रज्जू भाई श्रोता सभे खबर ही बा कि किसान लोगन की आमदनी बढ़ावे खातिर के सरकार फल फूल आ सब्जी फसल के खेती के बढ़ावा दे रहल बटे। अधिक से अधिक किसान लोगन के एकरा खातिर के सरकार द्वारा अनुदान भी मिली। एह कड़ी में अनुमंडल क्षेत्र में सब्जी के खेती करे वाले किसान खातिर के अच्छा खबर बटे। राज्य सरकार सब्जी विकास योजना 2026-27 के तहत किसान के सब्जी के खेती खातिर के आवे वाला खर्चा के 75% अनुदान देहे। एकरे अलावा किसान के कुछ विशेष सब्जी जैसे कि ब्रोकली फूलगोभी पत्ता गोभी खातिर के उन्नत किस्म का भी बिचड़ा उपलब्ध कराई। किसान के यह बीज के बिचड़ा पर 75% के अनुदान के प्रावधान बाटे। 2,000 पौधा का वितरण यह योजना के तहत किसान के बीच कैल जाए। उहे मौसम मैंने सीजन में हरा सब्जी के खेती में 75% अनुदान के राशि पर करेला कद्दू नेनुआ आ भिंडी मरचा कद्दू पर अनुदान मिली। यह अनुदान के ही प्रक्रिया बा कि योजना का मुख्य उद्देश्य ये बाटे कि किसान के उच्च गुणवत्ता वाला सब्जी बीज व बिचड़ा उपलब्ध करावल बाटे ताकि वो उपज अधिक प्राप्त कर सकम साथे साथे अपने आय बढ़ा भी सकत बना। बहरहाल बिहार सब्जी विकास योजना के तहत किसान के उन्नत किस्म के सब्जी बीज आ बिचड़ा उपलब्ध करावे खातिर के विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकत बानी। आवेदन खातिर के आवश्यक दस्तावेज पहले माने पहले साल में अपडेट राजस्व रसीद देवे के होखी आ

0: सब्जी विकास योजना के तहत अनुदान का लाभ लेवे खातिर के इच्छुक किसान के भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र 2 वर्ष पहले से अपडेट राजस्व रसीद, ऑनलाइन अद्यतन रसीद आ वंशावली एकारनामा जौन बा ऊ देवे के पड़ी। एकरे बाद मान्यता प्राप्त भू स्वामी के जौन बाटे प्रमाण पत्र ओहमे से कोनो एगो अनिवार्य चीज बाटे देहल। अगर आवेदन का नाम भूमि स्वामी राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है तो भूमि स्वामी राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगावल जरूरी बाटे।
1: देखी बड़ा नीमन रूरा जानकारी देनी, ई बात बतैनी यदि हमनी के किसान भाई एकरा पर पहल करत हनी तो समझे कि उनका फायदे फायदा बा।
0: जी एकदम।
1: आ देखी कौनो काम करे से पहले सफलता तबे मिलेला जब ओकरा बारे में आदमी के प्रशिक्षण मिलल हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वैसे हमनी के खेती बाड़ी करे के समय आइल बा तो खेती बाड़ी करे में भी हमनी के खेती करे खातिर जौन जौन हथियार चाहिए, जौन औजार चाहिए आ कृषि यंत्र जौन चाहिए ओकरा के भी नीमन से रख रखाव देख लेवे के बा पहले ही।
0: इना हाँ, की भाई में तेल पानी दे देवे के होखी चाहे जंग फंग लगा
1: ले ट्रैक्टर बिगड़ जा।
0: हाँ।
1: पता चले कि ओकरा में गोटिए नीखे ट्रैक्टर के चाका में घूमता।
0: हाँ।
1: तो एकरा से हमनी के जरूरी बा कि कृषि यंत्र के देखभाल हमनी के पहले ही कलिया। अब रह गेल कि विशेष रूप से का देख रेख करे के चाहिए एकरा खातिर आई हमनी के सुनत नहीं जाए भेंट वार्ताकार बनी विकास सिंह यहाँ से भेंट के लिए बनी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। ताई हमने के सुनल जाओ कि खेती में खेती से पहले कृषि यंत्र के देखभाल कैसे कही जाओ।
0: एकदम सुनल जाओ।
2: श्रोता सभे खेती का समय चल रहल बा, खेती में जाए से पहले हमनी का जौन कृषि यंत्र मानसन ट्रैक्टर होखे, मोटर होखे, मशीन होखे, डीजल होखे, रीपर होखे या सीडर होखे, स्ट्राबेलर होखे या फिर ट्रांसप्लांटर होखे, पैडी ड्रम सीडर होखे, एकर देखभाल हो जाए के चाही। होला का कि हले बा तो वही तरह घाम में फेंकल बा आ जब हमनी के उपयोग कर चल जा तो पता चल कि ओकर फार टूट गए। तो खेती में जाए से पहले हमनी के का तैयारी करे के चाहिए। आज जोताई का जरूरत बा आ पता चल कि ट्रैक्टर बिगड़ के रखल बा, फिर गई मैकेनिक के हैं तब तक पानी खत्म हो गई, रोपनी वही तरह बंद हो गई। तो खेती में जाए से पहले हमनी के अपना मशीनन के बिल्कुल तैयारी रखे के चाहिए। कैसे तैयारी होके के चाहिए एकरा खातिर, एकरा जानकारी देवे खातिर हमारा संगे बानी डॉक्टर विकास सिंह, यहाँ का सहायक प्राध्यापक बानी कृषि अभियंत्रण का कृषि विभाग गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुहार रोहतास में। डॉक्टर विकास सिंह जी आपका हमारा स्टूडियो में स्वागत बा। पहले तो ये बताएं कि सामान्य जौन देखभाल बा कृषि यंत्रण का एक जौन किसान बा ओकरा के का सावधानी अपनावे के चाहिए खेती में जाए से पहले।
3: खेती में जाए से पहले कृषि यंत्र के देखभाल बहुत ही जरूरी बा। काहे कि कृषि यंत्र में बहुत दुर्घटना भी होए के चांस रहेला, हमारे जीवन के क्षति भी हो सकेला और भी बहुत तरह के कृषि यंत्र के भी नुकसान हो सकेला। तो एगो समान उपाय अगर हम बताई तो कोनो कृषि यंत्र चलावे से पहले ओकर जो ऑपरेटर मैनुअल बा ओकरा के बढ़िया से पढ़ ली। काहे कि कंपनी जौन कंपनी के बा उ ऑपरेटर मैनुअल में डिटेल्ड ओकर लिखल रहेला कि का करे के बा स्टेप बाय स्टेप। चाहे कोनो में घूमे वाला पार्ट बा तो ओकर नट बोल्ट चेक करे के बा कि ना, कोनो लुब्रिकेंट अगर आयल बा तो ओकरा बढ़िया से चेक करे के बा, अगर हाइड्रोलिक आयल में फिल होता तो हाइड्रोलिक आयल में भरे के बा। तो ऐसन कोनो अगर मैनुअल कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कइल गइल बा तो स्टार्टिंग से सबसे पहले किसान भाई के ओकरा के सुरक्षित रखे के बा, ओकर एक दुगो फोटो कॉपी करा के बढ़िया से अपना भीड़ रख लेवे के बा, ताकि वो मशीन में पैसा लागल बा, मशीन बहुत दिन यूज करे के बा, वो मैनुअल के हमेशा फॉलो करे के बा। दूसरा अगर बात कही जाए तो अगर ओमे कोनो घूमे वाला मशीन में कोनो पार्ट बाटे तो वहाँ पे जौन लुब्रिकेंट जौन चिकनाई वाला डाले के बाटे वो मैनुअल में जौन लिखल बा ग्रीस बाटे चाहे कोनो लुब्रिकेंट आयल बाटे तो ओकरा उहे स्टैंडर्ड क्वालिटी के डाले के बा, ताकि अगर ओमे कोनो घर्षण के कारण कोनो पार्ट्स के टूटल फूटल भेल तो वो लुब्रिकेंट आयल से बाहर निकल जाए, वो हमार मशीन के आगे फिर खराबी मत करे, चाहे ओकर अगर इंजन से ओकर

0: के बात इंजन के डिस्टर्ब ना करे, चाहे मशीन के अंदरूनी कोनो चोट ना पहुंचा देवे जैसे हमार उतना महंगा यंत्र खराब हो सके।
1: जी जी, देखिए हमनी का सामान्यतः गांवन में या खेतन में जौन उपयोग करे वाला मशीन बा उ ट्रैक्टर बा, बहुत सारा किसान रखले भी बान ओकरा के, आ जे ट्रैक्टर नहीं रख पावले उ पावर टिलर रखले बा।
0: जी जी,
1: तो ट्रैक्टर में हमनी के का सावधानी बरते के चाहिए, कितना घंटा पर मेंटेनेंस करे के चाहिए, कितना घंटा पर ओकरा में पानी डाले के चाहिए, तेल डाले के चाहिए, का ध्यान देवे के चाहिए, एकरा बारे में विशेष रूप से बताई हमरा किसान भाई लोग के।
0: देखिए सबसे पहले तो ट्रैक्टर अगर केहू किसान भाई रखले बा तो हम उनका से सबसे पहले अनुरोध करम कि ट्रैक्टर सही से चलावे पहले कोनो एक्सपर्ट से सीख ली। ट्रैक्टर के साथ कोनो लापरवाही ना करे के चाहिए। ट्रैक्टर में बहुत सारा यंत्र, बहुत सारे पार्ट्स घूम घुमा वाला बा, तो उसे कोनो लापरवाही ना करे के चाहिए। अब जब ट्रैक्टर रखले बानी, जौन कंपनी के रखले बानी, ओकर मैनुअल पूरा तरीके से फॉलो करी, और एगो जनरल जौन प्रिकॉशन होला, जो सामान्य सावधानियाँ होला, अगर ट्रैक्टर हमार 8 से 10 घंटा चल लेलस तो ट्रैक्टर में जो भी आयल के जहाँ जहाँ क्रैंक केस बाटे, चाहे जहाँ आयल नीचे भरल जाला, ओकर लेवल जौन स्टैंडर्ड बाटे उ ट्रैक्टर में उ चेक कर ली। काहे कि उहे तेल के भरोसे बाकी ओकर जो इंजन के जौन पार्ट्स बाटे, अलग अलग जौन पार्ट्स होला, क्रैंक शाफ्ट, पिस्टन, जो इंजन के अंदर होला, उहे तेल से सहारे घूमेला और ओकरा में कोनो घर्षण के कारण कोनो टूटे फूट ना होला, तो वो लेवल के जरूर चेक कर ली। अगर ट्रैक्टर के जो क्रैंक केस बाटे, चाहे नीचे जो आयल वाला जो टंकी बाटे, ओ में अगर नीचे कोनो सेडिमेंट जम गई बा, चाहे बालू उलू की जम गई बा, तो ओकरा के जो सेडिमेंट एगो फूल होला ओकरा से निकाल दी। ट्रैक्टर के टंकी के फूल कर ली अगर जरूरी बाटे तो। रेडिएटर के सही टाइम टाइम पे चेक कर ली, क्योंकि रेडिएटर जैसे हमनी के मानव खाती हमनी के कूलिंग सिस्टम जरूरी होला। गर्मी अगर ढेर लागे लागी तो देखी ना कि पूरा बॉडी हमनी के खराब होए लागेला, तबियत खराब हो जाला। वैसे ही ट्रैक्टर में बा, अगर कूलिंग ना कल जाए तो इंजन में इतना गर्मी होला कि वो अपने गर्मी से ओकर पार्ट से गला के चाहे खराब कर दी, ओकर एफिशिएंसी बहुत घटा दी। एगो समान तौर पे ये कहल जाला कि अगर इंजन 100% ऊर्जा जनरेट करेला, प्रोड्यूस करेला, तो ओकर 40% वो अपन एग्जॉस्ट गैसेस, मतलब जौन धुआं जल के बाहरी निकलेला ओकरा से निकल जाला, बाकी 30% हमनी के ठंडा करके ओकरा के बर्बाद करनी जा, बाकी 30% जा जौन कि हम यूज कर पाई ना, काहे कि हमार सिस्टम अभी इतना एफिशिएंट नहीं के भइल कि 90 में 100% यूज कर पाए। वो हमारा 30% कूलिंग करे के हल ही बा, उतना हमारी एफिशिएंसी अभी बढ़ल नहीं के। तो ऐसे हम रेडिएटर के अच्छे से चेक कर ली, रेडिएटर में अगर पानी भरल बा कि पानी नहीं के भरल, वो रेडिएटर टैंक के सही से चेक कर ली, फैन के चेक कर ली, रेडिएटर बेल्ट के चेक कर ली, हमार जो फ्यूल पाइप बाटे ओकर जो बेल्ट बाटे ओकर टाइटनेस चेक कर ली। ये सब हम 8 से 10 घंटा अगर ट्रैक्टर हमारा लगातार चलल बा तो ये सब समान सावधानियाँ बा जौन हमारा देखे के बा।
1: जी जी,
0: अगर यही में अगर बात कर जाए कि ट्रैक्टर हमारा ढेर देर चलल बा, 50-60 घंटा चल लेलस, ढेर दिन चलता, कंटिन्यू चलता, काम चलता, तो ओकरा में ये सब तो कैला के साथ साथ हम ओकरा फिल्टर के क्लीन कर ली, हम ओकर ब्रेक्स के सही से चेक कर ली, ओकरा में और भी जौन अंदर क्लच के जौन प्रेशर होला, क्लच के जौन पावर होए के चाहिए, वो क्लच सही से पकड़ता कि ना, छोड़ला पे पकड़ता कि ना, वो सब सही टेस्ट करा लेवे के चाहिए हमारा सर्विस सेंटर जा करके।
1: जी जी जी, ओकरा अलाइनमेंट के चेक करा लेवे के चाहिए ताकि टायर न खाए पाए।
0: हाँ, अलाइनमेंट चेक करा ली, टायर के फ्रंट और बाइक के जौन प्रेशर बाटे वो चेक करा ली।
1: जी,
0: ये सब सावधानियां हमरा के बरते के चाहिए।
1: जी, ई तो ट्रैक्टर का बात रहल, एकरा अलावा भी विभिन्न जौन कृषि यंत्र बनासन उकरा में छोट मोट समस्या आवत रहला जौन कि अपना से भी दूर कई जा सकेला, तो कौन कौन समस्या आवेली सन ओकर समाधान कैसे कही जाओ?
0: देखिए विभिन्न कृषि यंत्र में अगर कही जाए तो बहुत सारा यंत्र बा, ओकरा में से कुछ यंत्र के हम बताओ तनी कि जैसे हमनी के खेत में भूमि तैयार करे के मशीन बा
1: जी,
0: तो ओमे बा MB प्लाउ, मोल्ड बोर्ड प्लाउ आवेला, डिस्क प्लाउ बा, चीजल प्लाउ बा, रोटावेटर बा, सब सॉइलर बा। तो MB प्लाउ में जो मोल्ड बोर्ड होला आ शेयर होला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। काहे कि मेन खेत के जुताई में यह काम करेला, जो शेयर बाटे उहे मिट्टी के काटेला, और मोल्ड बोर्ड बा उहे मिट्टी के काटला, काटल मिट्टी के पलटी करेला। ये एकर MB प्लाउ के बहुत ज्यादा विशेष बनावेला बाकी सब अलग प्लाउ से। तो ये ध्यान रखे के बा कि जब भी हम ई प्लाउ के इस्तेमाल करी तो हमार शेयर के जहाँ नट बोल्ट बा सही से टाइट कसल होके, शेयर के हमार शार्पनेस

0: होके तेज होके अगर शेयर हमारे नीचे से भूथर हो गई बा, ब्लंट हो गई बा, तो ओकरा के चोख करा ली सही से, ताकि मिट्टी के कटाई के समय हमारे ट्रैक्टर पे ज़्यादा लोड ना पड़े। मल्ड बोर्ड जन बा में माटी अगर जाम हो गई बा ज़्यादा दिन से, अगर साफ नहीं कर ले तो साफ करा ली, ताकि ओकर मिट्टी पलटन जो कॉन्सेप्ट बाटे जेकरा खातिर बनावल गई बा उ सही से काम कर पावे। ओकर जो फ्रॉग बाटे जो सब पार्ट के जोड़ के रखेला ओकर नट बोल्ट सही से चेक कर ली। ये हमार मिट्टी के मतलब भूमि तैयार करे के, भूमि तैयार करे में दूसर जो मशीन बाटे चीजल प्लाऊ बा, रोटावेटर बा, डिस्क प्लाऊ बा, तो डिस्क प्लाऊ में देखी डिस्क लागल रहेला। अब डिस्क प्लाऊ में भी दो तरह के डिस्क प्लाऊ आ गई बा, स्टैंडर्ड डिस्क वर्टिकल डिस्क प्लाऊ, दोनों के अपन अपन काम बा। तो एमे स्क्राइपर एगो रहेला जो डिस्क प्लाऊ से माटी को छुड़ावत रहेला, उ स्क्राइपर अगर ढीला हो जाए तो डिस्क प्लाऊ के जो एक्शन होला माटी काटे वाला उ सही से ना हो पाई। स्क्राइपर के ध्यान रखी कि डिस्क प्लाऊ में से सही से अटैच होके, अगर ढीला हो गई बा तो ओकरा के कस ली, स्क्राइपर में अगर धार कम हो गई बा तो ओकर धार के सही कर ली। फिर डिस्क प्लाऊ में एगो और बात ध्यान रखे के बा कि ओमे दो तरह के कोण बनावल जाला, एगो डिस्क कोण कहाला एगो टिल्ट कोण कहाला। ओकर एगो विशेष काम रहेला भूमि कटाई के दौरान, तो उ जोन स्टैंडर्ड डिस्क प्लाऊ चाहे वर्टिकल डिस्क प्लाऊ जोनो डिस्क प्लाऊ अपन यूज करतनी ओकर मैनुअल के जरूर फॉलो करी, ओकर मैनुअल के जरूर देखी। डिस्क प्लाऊ में डिस्क एंगल मेनली रउआ के 42 से 45 डिग्री तक बनावल जाला, टिल्ट एंगल रउआ के 15 से 25 बनावल जाला, तो उतना बनता कि ना, काहे कि अगर उतना ना बनी तो मिट्टी कटाई के दौरान वो हमारे डिस्क प्लाऊ वाइब्रेट करी, झटका दही हिली, हमार एकदम एक लाइन में कटाई ना करी, मिट्टी के पलटन सही से ना करी, तो इस सब के ध्यान हमरा देवे के पड़ी।
1: जी जी, तो डॉक्टर विकास सिंह जी आप पहली आ खेती में जाए से पहले हमनी का कृषि यंत्रण का कैसन देखभाल कल जाओ, कैसे कई जाओ आ कौन कौन समस्या आवेले ओकर समाधान कैसे कई जाओ, एकरा बारे में नीमन जानकारी धनी, एकरा खातिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखी कितना नीमन जानकारी देनी, मतलब डॉक्टर विकास सिंह यहाँ से भेंट के ले रहे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी, इतना नीमन जानकारी दिया खातिर ये लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। देखी हमने के अभी चर्चा बाद में कर ली, ओकरा पहले आई थोड़ा संदेश
3: सुन लेबे के एकदम।

0: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतरवर्ती खेती एवं रख रखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत

0: ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
1: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वहीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
1: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।
6: देखी दनिया बहन, अति हरी धान के सीजन चल रहा बा, आ धान के खेत तैयार करे खातिर ना चिकनी माटी निमन मानल जाला, आ एकरा में धान के खेती करे खातिर पर्याप्त पानी खेत में रखे के चाही। एकरा खातिर 20 से डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की जरूरत होला। अच्छा पैदावार खातिर खेत के तैयार आ बीज के उपचार सही समय पर करे के चाहिए। उर्वरक के भी प्रबंधन सही रखे के चाहिए। खेत के समतलीकरण भी करे के चाहिए, अच्छा तरह से समतल कर देवे के चाहिए खेत, जाना से कि खेत में हर जगह पानी समान रूप से भरल रहे। आवश्यकता अनुसार खाद उद भी डाल देवे के चाहिए।
7: देखिए हमने के देश में हरेक साल अभी 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनावल जला। आ यह सप्ताह का सबसे बड़ा संदेश यह बा कि जितना हो सके उतना पेड़ लगाई जा और देखभाल बढ़िया से करी जा। आज के समय में पेड़ लगावल एगो काम नहीं है बल्कि हमनी के सबका बड़ जिम्मेदारी बन गई बाटे। अगर धरती पर पेड़ नहीं रही तो हमनी का जीवन एकदम मुश्किल हो जाई। ऐसे हमनी सब कोई मिल करके पेड़ लगाई जा और उनकर बचाव का संकल्प लही जा। अब तन की मौसम पर
6: देखिए, मौसम संबंधी सरांसी बा कि अभी से 5 जुलाई के दौरान जिला में 1 से 2 स्थान पर गरज के साथ पानी पड़ सकेला, आंधी भी चल सकेला, हल्का से मध्यम वर्षा होके के अनुमान बा। हमने के जिला में 1 से 2 स्थान पर भारी वर्षा भी हो सकेला। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85%, दोपहर में 25 से 30% रहे के अनुमान बा।
7: देखिए अब किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहनी है संतोष कुमार। यही के साथ अब हमने का समय इजाजत नहीं है देत तो चल चल सभी श्रोता लोगन के रनिया बहन का नमस्कार और रज्जू भाई रघु के नमस्कार।
6: नमस्कार रनिया बहन, सब श्रोता भाई बहन लोगन के भी रज्जू भाई की तरफ से नमस्कार।

ये था किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। हमारे केंद्र से अब लीजिए सुनिए भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम सुनवा रहे हैं शब्बीर कुमार की आवाज़ में बिहारी बाबू फिल्म से एक गीत, जिसे लिखा है ब्रिज किशोर दुबे ने और संगीत दिया है चित्रगुप्त ने, और गाने का बोल है मानो हो मोरे भैया बिहारी के कहनवा।

मन हो मोरे भैया, बिहारी के कहनमा। अभी आप सुन रहे थे बिहारी बाबू फिल्म से ये गीत शब्बीर कुमार की आवाज़ में। ब्रिज किशोर दुबे ने गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था चित्रगुप्त ने। आकाशवाणी सासाराम से इस समय आप सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत। अब लीजिए सुनिए नदिया के पार फिल्म से एक गीत हेमलता की आवाज़ में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देही ओके बुलंदियन के पांख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
1: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
0: ता बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
1: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
2: श्रोता, इस समय आपने ट्यून किया है आकाश

मणिषा शर्मा और सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत। दरोगा बाबू आई लव यू, अब हम सुनवा रहे हैं इस फिल्म का ये गीत उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत को लिखा है विनय बिहारी ने और संगीत दिया है लाल सिन्हा ने।

आवत हुई हैं सांवरिया। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का ये गीत कयूम और चंद्राणी मुखर्जी की आवाज़ों में। उमाकांत तिवारी ने गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था दिलीप दत्ता ने। और अब सांझ गीत कार्यक्रम के अंत में हम सुनवा रहे हैं भोजपुरिया लाठी फिल्म का ये गीत उदित नारायण की आवाज़ में। प्रेमी परमेश्वर पारस की रचना है और नासिर खान का संगीत।

श्रोताओं को गुड इवनिंग। रोहतास कार्यक्रम में आइए एक नज़र डालते हैं स्थानीय गतिविधियों पर। जिले को मिलेगा आधुनिक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट। जिया सासाराम में स्थित जर्जर इंडोर बैडमिंटन कोर्ट को अब आधुनिक स्वरूप में विकसित किया जाएगा। बुधवार को जिले के बैडमिंटन खिलाड़ियों के प्रतिनिधिमंडल ने डीएम दीपक कुमार मिश्रा से मुलाकात कर इंडोर कोर्ट की खराब स्थिति से अवगत कराया। खिलाड़ियों की समस्याएं सुनने के बाद डीएम ने कोर्ट के पुनर्निर्माण का आश्वासन देते हुए भवन निर्माण विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि उन्होंने स्वयं इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का निरीक्षण किया है और उसकी वर्तमान स्थिति काफ़ी जर्जर है।

उदित नारायण के गए भोजपुरी अलाटी फिल्म के इस गीत के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं।

जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। सासाराम समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बुधवार को डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें रखी। डीएम ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। संबंधित विभागों और पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।

डॉक्टर्स डे के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA रोहतास की 6 सदस्यीय टीम ने बुधवार को नए जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा से उनके कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने बुके एवं अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया तथा जिले की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। तो श्रोताओं, ये थी कुछ स्थानीय गतिविधियां और अब हम सुनवा रहे हैं एक गाना और इसे हमने लिया है अंधा कानून फिल्म से। आवाज है किशोर कुमार की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: श्रोताओं, हमारे पास एक और सूचना है। आज दिनांक 2 जुलाई 2026 को जिलाधिकारी रोहतास दीपक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंताओं के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़कों की वर्तमान स्थिति, उनके रखरखाव, मरम्मत कार्यों तथा यातायात व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीण कार्य विभाग के सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि अपने अपने कार्यक्षेत्र की सड़कों का नियमित निरीक्षण करें तथा जहां कहीं भी छोटे या बड़े गड्ढे पाए जाएं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अविलंब भरने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। और श्रोताओं, इसी के साथ हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास समाप्त होता है। यह आकाशवाणी सासाराम है। अब हम थोड़ी देर में रिले करेंगे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले की हलचल। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
2: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
1: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी प्रमंडलों में विशेष निगरानी अदालतों की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, ट्रिपल टी से भ्रष्टाचार मुक्त होगा बिहार। निर्वाचन आयोग ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की

0: घोषणा की। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को होगी मतगणना। पटना मेट्रो का आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक हुआ विस्तार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विस्तारित कॉरिडोर का शुभारंभ किया। और बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से बिहार के कई श्रमिकों की मौत, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य के सभी प्रमंडलों में निगरानी के विशेष अदालतों की स्थापना की जाएगी, साथ ही प्रत्येक जिले में निगरानी थाने और सभी अनुमंडलों में निगरानी ओपी खोले जाएंगे। श्री चौधरी पटना में बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: प्रत्येक अनुमंडल में आप थाना बनाइए और सभी जिले में ओपी बनाइए, जिससे कि पूरी व्यवस्था नीचे तक जाने का काम हो सके। उसी तरह न्यायालय के लिए जो आपको अतिरिक्त सेट की आवश्यकता है, मैं जरूर आग्रह करूंगा कि पटना में विशेष न्यायालय निगरानी प्राकृत पदाधिकारी एवं विशेष न्यायालय पटना का 3 न्यायालय के एक अतिरिक्त सेट का गठन किया जाए। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर में भी विशेष न्यायालय का 3 न्यायालय का एक अतिरिक्त सेट गठित किया जाए।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शी प्रशासन के लिए ट्रिपल टी, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने लोगों से भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।
1: इसमें हम लोगों ने ट्रिपल टी की कल्पना की है, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट, और इसके माध्यम से जनता का भरोसा और जनता के बीच में जाकर उनके भरोसे को कैसे कायम रख सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। और इसलिए विशेष तौर पर यह अभियान चलाने से हम बिहार के लोगों को न्याय दे पाएंगे, बिहार का जो समृद्धि का रास्ता है उसको खोल पाएंगे।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस पर राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में कर्मियों को सतर्कता की शपथ दिलाई गई। निर्वाचन आयोग ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस सीट के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा। चुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी और इसी दिन से नामांकन पत्र भरने का काम भी शुरू हो जाएगा। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई निर्धारित है। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के चलते इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक कॉरिडोर के तहत मलाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा के विस्तार का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने खेमनीचक और मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण भी किया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पटना में मेट्रो रेल सेवा का विस्तार अब आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक हो गया है। पूरे रूट की लंबाई 6.2 किलोमीटर है। यह दूरी 15 मिनट में तय होगी। आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक का किराया 30 रुपए निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव और नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा सहित कई गणमान्य लोगों ने मेट्रो में यात्रा भी की। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान आज तिरुपति में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।

0: पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श होगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श में केंद्र राज्य सहयोग को मजबूती मिलने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर सुशासन, अवसंरचना, सार्वजनिक सेवाएं और समावेशी ग्रामीण विकास के लिए सहायता मिलने की संभावना है। कृषि विभाग ने किसानों को सस्ती कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नई पहल की है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत कोल्ड स्टोरेज में सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने पर 50% या 17,50,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत 50 कोल्ड स्टोरेज को सौर ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य है। यह योजना कोल्ड स्टोरेज की सुविधा की कमी वाले 12 जिलों मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल और शिवहर में लागू होगी। लाभुकों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक कोल्ड स्टोरेज संचालक बिहार कृषि ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में आगामी 14 अगस्त तक 1 करोड़ लोगों की टीवी स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मिशन मोड में अभियान चलाकर लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। टीवी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य की 2,76,00,000 लक्षित आबादी में से अब तक 39,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। यह लक्ष्य का केवल 14% है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार मृतकों में बिहार के रहने वाले कई श्रमिक भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। यह राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। मॉनसून की सक्रियता से आज पटना, बक्सर, सारण, वैशाली, बेगूसराय और खगड़िया समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर के अधवारा में सबसे अधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर

0: धूल भरी आंधी के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।
1: दिनांक 3 जुलाई राज्य के उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर बारिश होने से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सीवान का जीरादेई सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी 5 जुलाई तक इस पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम जारी किए जाएंगे। मधुबनी जिले के ऐतिहासिक सौराठ सभागाछी में पारंपरिक सौराठ सभा की आज से शुरुआत हुई। मिथिला की इस प्राचीन वैवाहिक परंपरा में बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों से मैथिल ब्राह्मण परिवार विवाह योग्य वर और वधु के संबंध तय करने के लिए पहुंचते हैं। सभा में पारंपरिक पंजी व्यवस्था के अनुरूप वंशावली और गोत्र का मिलान कर विवाह प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। जिला प्रशासन ने सभा स्थल पर सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य सेवाओं सहित आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पटना से शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग के अवर सचिव आमोद मिश्रा को 20,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारी एक सेवानिवृत्त कर्मी से एरियर के भुगतान के एवज में रिश्वत ले रहा था। सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत नरसिंह भानपुर गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से दो किशोरियों की मौत हो गई। औरंगाबाद जिले के पौथू थाना क्षेत्र अंतर्गत भताई मोड़ के पास एक तेज रफ्तार चारपहिया वाहन की चपेट में आने से दो छात्राओं की मौत हो गई। मुंगेर जिले के बड़ियारपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में एक किराने की दुकान में आग लग गई। अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। मधुबनी जिले के भेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ाराही गांव में पुलिस ने एक व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के सुखासन पंचायत में पटवन के दौरान करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। कटिहार जिले के मनिहारी आईटीआई के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 60,000 रूपये लूट लिए। अररिया के जिलाधिकारी विनोद धुहन के निर्देश पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 प्रखंडों में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक पिकअप वैन से 3,000 लीटर पेट्रोल के साथ चालक और खलासी को गिरफ्तार किया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पेट्रोल की गुणवत्ता संदेहास्पद पाई गई है। पेट्रोल के नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी प्रमंडलों में विशेष निगरानी अदालतों की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, TTT से भ्रष्टाचार मुक्त होगा बिहार। निर्वाचन आयोग ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को होगी मतगणना। पटना मेट्रो का ISBT से मलाही पखड़ी तक हुआ विस्तार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विस्तारित कॉरिडोर का शुभारंभ किया। और बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से बिहार के कई श्रमिकों की मौत। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।

0: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
1: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
0: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार,
1: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है दरभंगा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मणिकांत झा।
2: दरभंगा जिले में मानसून का असर दिखने लगा है। पिछले कुछ दिनों से जिले के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बारिश से मौसम में नमी बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। हालांकि आर्द्रा नक्षत्र शुरू होने के बाद भी लगभग एक सप्ताह तक पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण कृषि कार्यों पर इसका असर पड़ा है। खासकर धान की रोपनी का कार्य अपेक्षित गति नहीं पकड़ सका है, जिससे किसानों को समय पर बुआई को लेकर चिंता बनी हुई है। इधर कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर केवल धान की खेती पर ही नहीं बल्कि बागवानी और फल उत्पादन पर भी देखने को मिल रहा है। बीते दिनों जिले की सभी पंचायतों में पंचायत विकास दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम हयाघाट प्रखंड के आनंदपुर सहोरा मध्य विद्यालय में हुआ। इसका शुभारंभ पथ निर्माण मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री कुमार शैलेंद्र और वन और पर्यावरण मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने किया। कार्यक्रम में पंचायतों के समग्र विकास, जन भागीदारी, महिला सशक्तिकरण और सशक्त विकास लक्ष्यों पर जोर दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से ही विकास योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकता है। वहीं उप विकास आयुक्त ने कहा कि पंचायत विकास दिवस का उद्देश्य गांवों में लोगों की भागीदारी बढ़ाकर सतत विकास लक्ष्यों को जमीन पर उतारना है। उन्होंने बताया कि पंचायत विकास के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए हैं, जिन्हें 9 प्रमुख विषयों के तहत लागू किया जा रहा है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, महिला और बाल विकास, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत सुविधाएं शामिल है। केवटी प्रखंड प्रमुख पर वित्तीय अनियमितता के मामले में दरभंगा प्रमंडल के लोक प्राधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त ने बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 44(4) के तहत उन्हें पद से हटाने की अनुशंसा पंचायती राज विभाग को भेजी है। इससे पहले लोक शिकायत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ने सरकारी राशि के दुरुपयोग के आरोपों को देखते हुए जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था और पद अच्युत की अनुशंसा करने को कहा था। इधर पुलिस ने मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह का पंडाफोड़ किया है। जिले के अलग अलग परीक्षा केंद्रों से 6 फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी नवादा, गया, अरवल, रोहतास, भोजपुर और भागलपुर के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने असली अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के लिए 12-12 लाख रुपए में सौदा किया था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से ब्लूटूथ डिवाइस, वॉकी टॉकी सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। मामले में लहरियासराय और नगर थाना में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों को और पूरे नेटवर्क की तलाश कर रही है। केवटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने 48 दिव्यांगजनों के बीच मोटराइज ट्राई साइकिल

0: वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उसकी आवाजाही को आसान करना है। वितरण के बाद सभी लाभुकों को ट्राई साइकिल चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही यूडी आईडी कार्ड के महत्व और उसके मिलने वाली सरकारी सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। जिले की रैयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने के प्रयास तेज हो गए हैं। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने मिल परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया और उपलब्ध संसाधनों तथा आधारभूत संरचना का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को मिल के विकास और विस्तार के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिल के दोबारा शुरू होने से गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के बग्गा और त्रिभुवन गांव में मुहर्रम जुलूस के बाद हुए विवाद के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने बताया कि चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें बग्गा गांव के 14, त्रिभुवन के 12 और खिरमा पथरा गांव के 2 लोगों को नामजद किया गया है। इसके अलावा 50 से 60 अज्ञात को भी आरोपी बनाया गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे दरभंगा जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मणिकांत झा।
2: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ई मनपसंद कार्यक्रम में। और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए श्रोताओं, इस सुरीले सफर को शुरू करते हैं। आरंभ में हम सुनवा रहे हैं चिराग फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। मजरू के बोल हैं और मदन मोहन का संगीत। और इस गीत के लिए फरमाइशी मेल भेजा है फोटानी चौक नारायण एस्टेट समस्तीपुर से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन पराशर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। और आप सब हैं ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय कारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री। और ये हमारे श्रोता हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। तो चलिए आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं चिराग फिल्म का ये गीत।

बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और हमारे कई श्रोता बरसाती गीत के फरमाइश किए हैं। कार्यक्रम का अगला गीत भी हमने लिया है, बरसाती गीत है और इसे हमने लिया है प्यासा सावन फिल्म से, सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, संतोष आनंद के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और इस गीत को फरमाइश मेल के जरिए अपनी फरमाइश भेजा है हमारे श्रोता दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल ने। गम्हरिया जमशेदपुर से बिपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल ने भी

इसी गीत को सुनना चाहा है और आप सब हैं जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। प्यासा सावन फिल्म के इसी गाने के लिए इन्होंने भी मेल किया है हमारे श्रोता। एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अंबई छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके वैशाली अनिल, प्रजक्ता घोटके वैष्णवी घोटके, गायत्री घोटके और यज्ञेश घोटके। और ये हमारे श्रोता हैं बंगलाघाट बक्सर से ललन प्रसाद और चंदा देवी। तो चलिए आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं प्यासा सावन फिल्म का ये गीत।

पैसा सावन फिल्म के इसी गाने को सुनना चाहते हैं। ग्राम नाहोना सासाराम से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ सिंह, जगदीश, दशरथ, विमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं कार्यक्रम ई मन पसंद। चलिए, कार्यक्रम में हम एक और बरसाती गीत शामिल कर रहे हैं और इसे हमने लिया है सबक फिल्म से, मुकेश की आवाज़ में, सावन कुमार की रचना और उषा खन्ना का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, रुचि कुमारी, मदनेश्वर सिंह, प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, वैभव, सीता मुनि देवी, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे। और ये हमारे श्रोता हैं पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। ऐशबाग लखनऊ से रानी मुकेश गुप्ता, रश्मि नीलम, कुसुम रूपा इलाहाबादी। राजनगर कांति निकेतन से हमारे श्रोता हैं कुशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता और कोमल गुप्ता। तो पेश है आप सबों की पसंद पर सबक फिल्म का ये गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं हमारा ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। श्रोताओ, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में अपनी पसंद के गाना सुन सकते हैं, तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पर अपना मेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है akashvanisasaram@gmail.com और मेल अपराह्न 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच भेजना है, तो आप फरमाइशी मेल भेजें, हम जरूर शामिल करेंगे। चलिए अब कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं आप सबों की पसंद पर संगम फिल्म से ये गीत मुकेश और वैजयंती माला की आवाज़ों में। शैलेंद्र ने गीत को लिखा है और संगीत से संवारा है शंकर जय किशन ने, और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल राय, बोलकी वाली और फलना झा। नयानगर सुपौल से श्वेता रंजन विद्यार्थी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार, निराला और चिलना झा। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से हमारे श्रोता हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुवीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। और कलेर बिहार से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन। तो लीजिए आप सब सुनिए संगम फिल्म का ये गीत।

ई मनपसंद कार्यक्रम में अब हम सुन रहे हैं आप आए बाहर आई फिल्म का एक गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और इस गाने के लिए फरमाइशी मेल भेजा है हमारे श्रोता पारसमणी रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डंगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से हमारे श्रोता हैं खुदाबख्श खलीफा, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, परमिला श्याम कुंवर, चिन्नू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। और ये हमारे श्रोता हैं गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी,

उपेंद्र कुमार डूडी और आपके ढेर सारे मित्रगण। तो चलिए, आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं आप आए बाहर आई फिल्म का ये सदाबहार गीत।

जी लनानंद इतला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल। वेडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और कुंडलवाली महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश, रिशिता और आप सब हैं। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। तो चलिए आप सब की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं साथी फिल्म से ये गीत, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। मजरू के बोल हैं और नौशाद का संगीत।

इसी गाने को सुनना चाहते हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनाबाद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद सिकर और मोहम्मद अलकामा खत्री। नयका गांव धर्मशाला सासाराम से राजेंद्र सिंह, शकुंतला देवी, प्रीति, राहुल और बादल।

कार्यक्रम में अब हम सुनवा रहे हैं इंतकाम फिल्म का एक गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और फरमाइशी मेल किया है हमारे श्रोता गांव टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियतम थांडी, बेबी वामिका और वाणी थांडी। आप सब हैं गुमला झारखंड से हमारे श्रोता नजमुल होदा, एसएम जावेद और सगुप्ता अंजुम। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश साहू। डुमरा विहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। ग्वाला बाजार बक्सर से हमारे श्रोता हैं सदानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। तो पेश है आप सबों की पसंद पर इंतकाम फिल्म से ये गीत।

और ये मनपसंद कार्यक्रम के आखिर में हम सुनवा रहे हैं एक बरसाती फिल्मी गीत, और इसे हमने लिया है बरसात फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत संवारा है शंकर जयकिशन ने, और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं ग्राम खरवत गढ़नोखा से मोतीमाला गुप्ता, लाल बिहारी सिंह, वीरा सिंह और सुनील कुमार राय, गढ़नोखा लालगंज रोहतास से राजकिशोर सिंह और बड़क सिंह चौहान, मोहल्ला बाग भाई खास सासाराम से हमारे श्रोता हैं शमशेर आलम, गोल्डन आलम, मंजर आलम और एस के जहीर, और मोहल्ला खिलनगंज से हमारे श्रोता हैं लोकेश कुमार साहू और दिलनवाज अंसारी। तो चलिए, आप सबों की पसंद पर हम पेश कर रहे हैं बरसात फिल्म का ये गीत।

0: और श्रोताओं इसी गीत के साथ हमारा ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद अब समाप्त होता है। अभी हमारे इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश के गाना सुन सकते हैं, तो आप हमारे इस ईमेल एड्रेस पर अपना फरमाइशी मेल भेज सकते हैं। हमारा एड्रेस है akashvanisasaram@gmail.com। अपराह्न 1 बजे से 5 शाम 5 बजे के बीच मैसेज करना है। और अब दीजिए इजाज़त अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। यह आकाशवाणी सासाराम है। थोड़ी देर में हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: किलोहर्ट्ज़ पर अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले 1 वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार।

0: विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच

0: अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 9 बजे हैं। लोकधारा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए भोजपुरी लोकगीत। आरंभ में हम सुनवा रहे हैं भरत सिंह भारती और साथी के स्वर में ये बरसाती गीत।

भरत सिंह भारती और साथी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे शीतला गीत। और अब लोकधारा कार्यक्रम के अंत में हम सुनवा रहे हैं ललन सिंह गहमारी के स्वर में ये पूर्वी

ललन सिंह अमेरिका गए इस पूर्वी के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी सासाराम है और अब हमारे केंद्र से अब लीजिए सुनिए गजलों का कार्यक्रम महफिल। इसमें पहले हम सुनवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज में नक्स लालपुरी की यह गजल।

0: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: महफिल कार्यक्रम में अब हम सुना रहे हैं गुलाम अली की गाई यह गजल, दौलत मिलती है जहाँ की

0: गुलाम अली की गई इस गज़ल के साथ ही महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। अब हम थोड़ी देर में रिले करेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: के फनकार कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज।

0: दोस्तों, लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।
1: उंगली में

0: जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
1: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहां याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है।

0: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

और ये गीत है साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आप भी याद रखेंगे क्योंकि फिल्म का नाम है याद रखेगी दुनिया।

0: इसलिए।
1: दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौड़वाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 MHz पर। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रस रंग। इसमें हम सुन रहे हैं एल्बम सॉन्ग्स।

श्रेया घोषाल और टोनी कक्कड़ की आवाज़ों में आप सुन रहे थे प्रिंस दुबे की ये रचना। एल्बम था बारिश के आने से। अब हम सुनवा रहे हैं दिल लगाया था दिल लगी के लिए एल्बम से ये पारंपरिक रचना। आवाज़ है शबनम मजीद की।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी सासाराम से समय आप सुन रहे हैं रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग्स। अब लीजिए सुनिए आलोक कुमार की आवाज में अशोक कुमार दीप की ये रचना वो लड़की याद आती है।

और अब रसरंग कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं अखिलेश कुमार की आवाज में ये रचना, एल्बम है मदमस्त नैना।

इसी के साथ रसरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट तराने। नमस्कार श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस दुनिया से सारे रंग गायब हो जाए तो ये दुनिया कैसी दिखेगी? सही सोचा आपने, सिर्फ काला और सफ़ेद, यानी कि ब्लैक एंड वाइट। श्रोताओं, कुदरत ने हमें हर रंग से नवाजा है, जैसे आसमान का नीला रंग, पेड़ों का हरा रंग और सूरज का सुनहरा रंग। लेकिन श्रोताओं, कुदरत ने सबसे ज़्यादा रंग भरे हैं इंसान की ज़िंदगी में। तो चलिए आज बात करते हैं ज़िंदगी के कुछ रंग के बारे में। श्रोताओं, ज़िंदगी कोई एक सीधी लकीर नहीं है, यह एक ऐसा कैनवास है जहां हर दिन एक नया रंग बिखरता है, जिसमें कुछ रंग खुशी के होते हैं, कुछ गम के, कुछ रंग कामयाबी के होते हैं तो कुछ सीख के, यानी कि ज़िंदगी के कई रंग हैं।

जिंदगी के रंग कईरे। अभी आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में। साहिर की रचना थी और रवि का संगीत। श्रोताओं, अगर कैनवास पर एक ही रंग हो तो क्या पेंटिंग सुंदर लगेगी? बिल्कुल नहीं। पेंटिंग तभी मुकम्मल होती है जब उसमें हर तरह के सेट्स यानी रंग हो। इसलिए अगर आज जिंदगी में संघर्ष का रंग गहरा है तो घबराइए मत, यह आपको और मजबूत बना रहा है।

किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे दूर का राही फिल्म का गीत। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट तराने। और इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं जिंदगी के रंग के बारे में। श्रोताओं, रिश्तों में कभी कभी गलतफहमियों का धुंधला रंग भी आ जाता है, लेकिन समझदारी का सफ़ेद रंग मिलाकर हम उस धुंध को साफ कर सकते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, नाराजगी में इसे काला मत बनाइए। जिससे भी अनबन हुई है उसे माफ़ करके अपनी जिंदगी में फिर से मोहब्बत का रंग भर दीजिए। सच में जब किसी का अपनापन भरा साथ मिल जाता है तो हर मुश्किल आसान हो जाता है, अंधेरे में भी रोशनी दिखाई देने लगती है।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे प्यासा सावन फिल्म का ये गीत। गीतकार थे संतोष आनंद और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। श्रोताओं, आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम कहीं न कहीं रिश्तों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर 5,000 दोस्त बना लेते हैं, लेकिन घर में बैठे 4 लोगों से बात करने का वक्त नहीं होता। मगर एक बात हमेशा याद रखिएगा श्रोताओं, जब जिंदगी का आखिरी वक्त आएगा तो बैंक बैलेंस या गाड़ियों के मॉडल याद नहीं आएंगे, तब सिर्फ याद आएगा कि आपने कितने दिलों को छुआ, कितने लोगों को हंसाया, कितनों की मदद की और कितने लोगों ने आपको सच्चे दिल से प्यार किया। और श्रोतावंत में हम यही कहेंगे कि जिंदगी सिर्फ सफ़ेद या काली नहीं होती, यह एक खूबसूरत इंद्रधनुष है। इसमें हर रंग का अपना महत्व है, तो सुख हो या दुख हर रंग को गले लगाइए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीना इसी का नाम है।

श्रोताओं, चित्रपट तराने कार्यक्रम में आज हमने बात की जिंदगी के रंग के बारे में। बहरहाल, अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में अनाड़ी फिल्म का गीत। शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। और अब इसी के साथ चित्रपट तराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। दीजिए इजाज़त अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब हम कार्यक्रम विवरण में आपको जानकारी दे रहे हैं। कल हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों के बारे में

कल सुबह 7:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा नमस्ते रोहतास। सुबह 8 बजे दिल्ली से हम रिले करेंगे समाचार प्रभात, और सुबह 8:20 पर पत्र आधारित हमारा फरमाइशी कार्यक्रम होगा पसंद आपकी।

कल सुबह 8:45 पर पटना केंद्र से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार, और कल सुबह 9:10 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका।

सुबह 9:30 पर विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार हम रिले करेंगे। सुबह 10:05 पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा खेल खिलाड़ी।

सुबह 10:30 बजे लोक माधुरी कार्यक्रम में सुनिएगा भोजपुरी एल्बम से लोकगीत और 10:45 पर रसधार कार्यक्रम के अंतर्गत सुनवाए जाएंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स।

दिन के 11 बजे से आप सुनेंगे लोक माधुरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम से लोकगीत, और पूर्वाह्न 11:25 से हम रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम

कल हमारी शाम की सभा में आप सुनेंगे शाम 5:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा घर आंगन।

संध्या 6:05 पर पटना केंद्र से हम रिले करेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन और संध्या 6:10 पर हमारा ग्रामीण कार्यक्रम होगा गांव घर। और गांव घर कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा वनों का हमारे जीवन में महत्व विषय पर। और एक वार्ता सुनवाई जाएगी, विषय होगा वृक्षारोपण आज की जरूरत। वार्ताकार होंगे

थे राम भरत सिंह। संध्या 6:40 पर भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सांझ गीत, और शाम 7:15 पर हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम होगा गुड इवनिंग रोहतास।

शाम 7:30 बजे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले के हलचल हम रिले करेंगे पटना केंद्र से। शाम 7:50 से आप सुनेंगे ईमेल आधारित हमारा फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। रात्रि 8:45 बजे समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से।

रात्रि 9 बजे सुनिएगा लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत, और रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम होगा बंदगी। इसमें आप सुनेंगे नात और मनकवत। कल रात्रि 9:30 पर पटना केंद्र से हम रिले करेंगे रेडियो सब साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प, और रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग्स, और कल रात्रि 10:30 होगा कार्यक्रम चित्रपट तराने।

तो अभी आप सुन रहे थे कल के हमारे कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हम दिल्ली से रिले करेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त

0: रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंग्लैंड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both prime ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy